103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी इस सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि

0: 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: .4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनिए चिंतन।

मनुष्य को छल कपट और पाप का उतना ही सहारा लेना चाहिए जितना वो खुद भोग सकता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार भी करना पड़ता है क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब रहता है। हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल भी मिलता है। किसी का दिल दुखाकर किसी का अहित करने के उपरांत हम स्वयं भी खुश नहीं रह सकते, इसलिए सदा सबके कल्याण की कामना करनी चाहिए, उसी में हमारा कल्याण भी निहित रहता है। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे प्रथम पूजनीय श्री गणपति जी की इस वंदना के साथ। सभी मांगलिक कार्यों को पूर्ण करने वाले गजानन गणाधीश हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, वह हमारे सभी काम सफल करें।

शनिदेव की कृपा से हर कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। ऐसे कर्म फलदाता शनिदेव की कृपा सदा हम पर बनी रहे।

आप अपने आराध्य को जिस भी नाम से, जिस भी स्वरूप से याद करेंगे, वो आपके कष्टों को मिटाने के लिए सदैव वहाँ पर उपस्थित रहेंगे।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

अभी आप सुन रहे थे मानस कान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की।

7:10 पर आप सुनेंगे सुबह सुहानी कार्यक्रम। 7:40 पर होगा हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान पाएंगे समाचार प्रभात में सुबह 8:00। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। दिन में 1:00, शाम 7:00 और रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात 9:00 News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11:00 हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर सुनिएगा गाने सुहाने कार्यक्रम और 9:00 होगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि। नौ बजकर 20 पर हम आपको प्रादेशिक समाचार सुनवाएंगे। इसके अलावा सुबह 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर भी प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। ये प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रातः 10:00 सुनेगा गीतों का कारवां कार्यक्रम और 10:30 पर आप सुनेंगे हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:30 पर आप सुनेंगे जय हिंद गीतमाला। दिन में 12:00 आप सुनेंगे सैनिकों के लिए कार्यक्रम और 12:30 पर आप सुन पाएंगे सुनो सखी कार्यक्रम। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का। शाम 5:10 पर हम आपको सुनवाएंगे भजन और 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। 6:05 पर किसान बागवान श्रोता सुन पाएंगे किसान वाणी कार्यक्रम और 6:35 पर सुनेगा मौजा ग्राई दिया कार्यक्रम। शाम 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे विशेष कार्यक्रम युवा शक्ति। 8:00 आप सुन पाएंगे विभिन्न गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। नौ बजकर 15 पर आज आप सुनेंगे हिम दर्शन कार्यक्रम जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। 9:30 पर आज आप सुनेंगे साहित्य भारती कार्यक्रम और 10:00 सुनेगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपरां सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैंपलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवसावसरे श्री पुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारंभो विहितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकास यात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिं अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% GDP विकासं निर्दिश्य श्री शाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणां अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय

नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल श्रोताओ, बने हुए हैं इस वक्त आप आकाशवाणी के धर्मशाला 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ, आपकी सुबह को और भी खुशनुमा और हसीन बनाने के लिए लेकर आ गए हैं हम प्रोग्राम सुबह सुहानी। श्रोतो, सुबह तो सुहानी होगी ही ना, क्योंकि शुरू हो चुका है ढेर सारी जानकारियां और फिल्मी गीतों से सजा प्रोग्राम सुबह सुहानी। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस सुविचार से। हुनर इंसान को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाता है, पर हमारा व्यवहार उस ऊंचाई को बरकरार रखता है, हमें उस ऊंचाई से गिरने नहीं देता। जी हाँ, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो हर किसी के दिल को जीत ले और जाने अनजाने भी हमारे से किसी का भी दिल ना दुखे। हम जिधर भी जाए हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां बिखेरते हुए चले जाए। तो चलिए भाई, आपकी खुशियों को और दुगना कर देते हैं और सुनवाते हैं आपको एक बेहद ही प्यारा सा गीत राजा और रंक फिल्म से।

जी हाँ श्रोताओ, आप भी अपने दिल के दरवाजों को खोल लीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सुबह सुहानी कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज विशेष की। श्रोताओ, हर दिन की एक खास कहानी होती है, कुछ ऐसे किस्से या फिर यूं कहे कि ऐसी घटनाएं होती है जो उस दिन को और भी विशेष बना देती है। तो चलिए क्यों ना नजर डालें ऐसी ही घटनाओं पर जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। 6 जून 1674 में महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि से भी इसी दिन सम्मानित किया गया था। वर्ष 1984 में सिख इतिहास के सबसे संवेदनशील अध्यायों में से एक स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार आज ही के दिन समाप्त किया। जून वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर जापानी लैब कीबो ने कार्य करना आज ही के दिन शुरू किया था। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो आपको बता दें कि 6 जून 1748 में पटियाला रियासत के महाराजा अमर सिंह का जन्म हुआ। वहीं वर्ष 1939 में भारत के प्रसिद्ध एथलीट गुरबचन सिंह रंधावा का भी जन्म हुआ। 6 जून 1929 में भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता सुनील दत्त का भी जन्म हुआ। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आप सभी का मनोरंजन हम गीत संगीत से करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोता, सुबह सुहानी कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी इस बात का जिक्र किया कि आज जो है वो सुनील दत्त साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, तो करेंगे उसी के बारे में बात। श्रोता, आपको बता दें कि सुनील दत्त हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड में सफलता के नए आयाम कायम किए, और इनका जन्म 1929 में पंजाब में हुआ। सुनील दत्त ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो सिलोन पर, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, वहां से एक उद्घोषक के रूप में की, और इन्होंने यहां पर अथाह लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय की ठानी और वो बॉम्बे चले गए। 1955 में बनी रेलवे प्लेटफॉर्म उनकी पहली फिल्म थी, पर 1957 की मदर इंडिया ने इन्हें बॉलीवुड का स्टार बना दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि 1960 के दशक में इनके द्वारा कई बेहतरीन फिल्में जो है वो दी गई, जिनमें साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, गुमराह वक्त, खानदान पड़ोसन और हमराज जैसी फिल्में शामिल थी। श्रोता, सुनील दत्त के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको बताते चले। जब 1957 में बनी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के वक्त आग लग गई, तो उस आग में अभिनेत्री नरगिस को बचाते वक्त सुनील दत्त बुरी तरह से झुलस गए। इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस की मां ने अपनी बेटी का विवाह सुनील दत्त से कर दिया। श्रोताओं, आगे चलकर इस खूबसूरत जोड़ी ने कई यादगार फिल्में सिने जगत को दी और सभी दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप हमेशा के लिए छोड़ दी।

103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला पर इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी कार्यक्रम। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि नशा किसी भी लिहाज से हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, बल्कि हमारे परिवार, हमारे सभी रिश्तों और हमारे भविष्य के लिए भी तबाह करने वाला साबित होता है। जी हाँ, नशे के इस बढ़ते चलन को रोकने के लिए जितना हम सभी का जागरूक होना जरूरी है, उतना ही इसके खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की भी जरूरत है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। सरकार द्वारा इसके लिए सख्त कानूनी प्रावधान, एंटी चिट्टा वॉलंटियर योजना, पुलिस भर्ती और सरकारी नौकरियों में अनिवार्य ड्रग टेस्ट और नशा मुक्त हिमाचल अभियान जैसे सराहनीय पहल की जा रही है। श्रोता, नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रमों में नशे के दुष्प्रभावों का एक अध्याय भी जोड़ा गया है। इसके अलावा ड्रग फ्री मोबाइल ऐप और के माध्यम से आम जनता को पुलिस से जोड़ने और जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चय ही सरकार के ये कार्य सराहनीय है, लेकिन हम सभी को अपने स्तर पर भी अपने बच्चों और आसपास के लोगों को इससे बचाने का प्रयास करना चाहिए। हर घर में माता पिता द्वारा अपने बच्चों पर ये नजर रखना जरूरी है कि हमारा बच्चा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, वो किस तरह के दोस्त बना रहा है, और सबसे जरूरी अपने बच्चे के व्यवहार पर नजर रखना हम सभी के लिए जरूरी है। इसी वजह से तो है जो हम अपने बच्चों को इस गहरे दलदल में जाने से बचा सकते हैं। जी हाँ, हम सब के ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे युवाओं के आने वाले कल को बचा सकते हैं। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ आप यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुछ बेहतरीन से गीत, और साथ ही साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हम आप सभी से रोजाना साझा ही करते हैं।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप है आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र के साथ और इस समय आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओं, जब सुबह इतनी सुहावनी हो तो हम आपको मौसम का हाल ना बताएं, भला ऐसे कैसे हो सकता है। आज सुबह की शुरुआत खिली खिली धूप से हुई है और जहाँ तक बात रही हिमाचल के मौसम की, इन दिनों तो यहाँ का मौसम बेहद ही खुशनुमा सा बना हुआ है। और ख़ासकर बात करें धर्मशाला की तो यहाँ पर हर रोज़ लगभग कभी सुबह के समय, कभी दोपहर तो कभी शाम को बारिश की हल्की बुहारें हम तक पहुंचती है और हमारे मौसम को थोड़ा सा ठंडा करके चली जाती है। वहीं बात करें इसके आसपास के स्थानों की तापमान की तो कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर जैसे स्थानों पर आपको थोड़ी गर्मी का अनुभव होने वाला है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ साथ यहाँ से आपको जो है ना वो कुछ ठंडी ठंडी हवा के झोंके आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए ऐसा ही राहत भरा एक गीत आप सभी को सुनवाते हैं। आनंद लीजिए शागिर्द फिल्म के इस गीत का।

0: श्रोता, इसी गीत के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कल इस कार्यक्रम को इसी वक्त सुनना ना भूलें।
1: सुबह सुहानी।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग।

0: दोस्तों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में संवाद बहुत जरूरी है और यही कोशिश करता है आपका अपना आकाशवाणी धर्मशाला का परिवार।
1: जी श्रोताओं, चैटिंग और मैसेजिंग की इस दुनिया में आकाशवाणी धर्मशाला आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा मंच जहां जुड़ती है आम जनता की आवाज, उनके विचार, उनके सुझाव और उनकी उम्मीदें।
0: आपकी इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी, जहां हर राय मायने रखती है, हर आवाज गूंजती है।
1: साथियों, जनवाणी सशक्त माध्यम है आपके और हमारे बीच संवाद का, जिसमें आप फोन कॉल्स के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं।
0: क्योंकि आपकी हर बात हमारे लिए मायने रखती है, तो आइए मिलकर अपनी बातें साझा करते हैं कार्यक्रम जनवाणी में, हर शुक्रवार सुबह 9 बजे FM धर्मशाला।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोतो, हिमाचली लोक संस्कृति से रूबरू करवाते हुए लोकगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम चल रहा है शुभ ब्याग।

श्रोतो, इसीलिए लोकगीत के साथ आज का शुभ ब्याह कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं ये देश गान।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है देश और दुनिया का ताजा हाल जानने के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। 8:15 पर सुनिए मॉर्निंग न्यूज।
1: पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
4: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
3: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास

0: योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
9: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, RBI ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान। इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26, despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
12: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
11: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
12: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारण का गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया।
11: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and

0: pioneer informs, Shah vows zero tolerance on demographic shifts as he addressed BSF personnel at Lankamura border outpost. CBSE drops CoEMS portal for re-evaluation with student and examination data migrated to infrastructure under the board's direct control, cites Hindustan Times. The Asian Age headlines, Putin says Russia ready to jointly build Su-57 stealth jet with India, suggests strong strategic partnership between the two countries. And finally, wind from Milky Way's black hole called Sagittarius A has been discovered after 5 decades of trying. Its wind is like a gentle breeze, not a hurricane. The wind has carved out a huge conical cavity in space, informs the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र. जी हां, सुबह के 8:30 हो चुके हैं और यहां हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं प्रोग्राम गाने सुहाने. जी हाँ श्रोताओ, गाने सुहाने बनते हैं गीतों की सुरीली धुनों से, जिन्हें सुनकर हम कभी झूमते हैं तो कभी जोरों से थिरकने लगते हैं. तो ऐसा ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए प्ले करने जा रहे हैं हम आपके रेडियो सेट्स पर. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों को. ये गीत आप सुन रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म है मन. तो प्यारे प्यारे से गीतों को सुनने के लिए, उन पर झूमने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. प्रोग्राम है गाने सुहाने.

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
2: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने सुहाने प्रोग्राम। जी हाँ श्रोताओं, गीतों में वो जादुई ताकत होती है जो हमें कभी हंसाती है, कभी हमें गुदगुदाती है, और कभी हमें कुछ खट्टी मीठी यादें ताज़ा भी करवा देती है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही बेहद प्यारा सा गीत। फिल्म है कुछ कुछ होता है।

0: करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: सुनो सखी,
1: क्या सुनना है,
2: क्या सुनाना है।
1: सोमवार को हिमाचली संस्कृति की बात हम करेंगे, जिसमें रंग बिरंगे रंगों में ढलेंगे।
3: मंगलवार को फोन इन महिला महफिल सजेगी, जिसमें बात करने के लिए सखियां स्टूडियोज में कॉल करेंगी।
4: ग्लैमर गलियारा होगा बुधवार का दिन हमारा, जिसमें दिखेगा खूबसूरती का नजारा।
3: जब वीरवार को होगी मिंजरा में बात, पहाड़ी झलक और मिट्टी की महक होगी साथ।
5: शुक्रवार को होगा कार्यक्रम उड़ान, जहां महिलाएं बनाएंगी अपनी खास पहचान।
4: आएगा दिन शनिवार, उसमें झलकेगा माँ बेटी का प्यार।
1: रविवार को होगा बच्चों का संग, जिसमें सजेगा बाल सभा का रंग।
0: सुना सखी, सब सुना सखी।
6: हाँ।

0: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने सुहाने प्रोग्राम, और हमारी स्टूडियो की घड़ी जो हमें टाइम दिखा रही है वो हुआ है सुबह के 8:44 और 15 सेकेंड। गाने सुहाने प्रोग्राम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म है ताल।
1: ta ta ta na na do

जी हाँ, थोड़ा ताल से ताल मिला रहे हैं हम अपने सुनने वालों के साथ, और साथ ही साथ स्टूडियो में बैठे बैठे थोड़ा सा झूमते झुमाते कुछ गुनगुनाते हुए आपके लिए प्ले कर रहे हैं प्रोग्राम गाने सुहाने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं गानी सुहानी प्रोग्राम।

श्रोता, इसी गीत के साथ आज का गाने सुहाने प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र, और देखिए सुबह के 9 बज चुके हैं और यहाँ पर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आज के गीतांजलि कार्यक्रम में हम आपके लिए प्ले करेंगे कुछ बेहद ही प्यारे प्यारे से गीत, और इन सब गीतों पर झूमने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर, सुनते रहिए गीतांजलि। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कॉकटेल फिल्म के इस गीत के साथ।

जी हाँ, गीतांजलि प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और यहाँ से हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं कुछ बेहतरीन से जो गीत है जो आपको झूमने पर मजबूर करने वाले हैं, और इस सब के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।

जी हाँ श्रोताओ, लाइफ को कभी कभी हैप्पी और हैपनिंग बनाने के लिए खुद के लिए टाइम निकाल कर म्यूजिक बीट्स पर नाचना भी जरूरी होता है। तो हो जाइए तैयार एक ऐसे ही म्यूजिकल नंबर पर झूमने के लिए हमारे साथ। जी हाँ, आकाशवाणी धर्मशाला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतांजलि।

श्रोताओं, गीतांजलि कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का। प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार आप पुनः से सुन पाएंगे गीतांजलि कार्यक्रम। 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा कर रही है राज्य सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने और चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लेने का किया आह्वान। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में, लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिवा परियोजना के तहत 586 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान कर 10 जून से पहले कार्य पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से वसूले जा रहे खालसा टैक्स को गलत बताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के निकट पोआबो गांव में वन विभाग द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित कमियाना हिल टॉप नेचर ट्रेल के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। करीब 8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस परियोजना में 2.5 किलोमीटर लंबा प्रकृति पथ विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता, प्रकृति के प्रति रुचि, जैव विविधता संरक्षण व सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ईमानदारी, पारदर्शिता व जनभावना की सेवा से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत 16 सड़कों के निर्माण के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती मतदाताओं की जागरूकता और सहभागिता पर निर्भर करती है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने और चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शिता चुनाव का आधार है और इस सूची में अनुपस्थित, डुप्लीकेट, मृत व विदेशी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार भी जताया।
1: शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव का आधार है और शुद्ध मतदाता सूची में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फॉरेनर्स, इनका स्थान नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी भारत का नागरिक 18 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो और उस मतदान केंद्र के आसपास रहता हो, उसका नाम अवश्य होना चाहिए।
0: प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों व पेंशनरों से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों पर चर्चा संभावित है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने व सृजित करने पर भी बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं को भी स्वीकृति मिल सकती है। प्रदेश में एचपी शिवा परियोजना के पहले चरण में लगभग 3083 हेक्टेयर क्षेत्र को अंतिम रूप दिया गया है, जिस पर कार्य जारी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में आयोजित इस परियोजना के दूसरे चरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि दूसरे चरण के लिए 7 जिलों में करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जाना है, जिसमें से 2414 हेक्टेयर क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा रहा है और लगभग 586 हेक्टेयर क्षेत्र की कमी पाई गई है। उन्होंने अधिकारियों को 10 जून से पहले 586 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान कर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कांगड़ा व चंबा सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीती रात 10 बजे के बाद भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई और इसका केंद्र 32.289 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 76.434 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मात्र 5 किलोमीटर की कम गहराई पर स्थित था। हालांकि इस भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि भूकंप के 3 झटकों से लोग सहम गए।
2: चंबा जिला में 2 घंटे के अंतराल के बीच आए भूकंप के 3 झटकों ने जिलावासियों को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि इन झटकों से कहीं भी किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन एक के बाद एक महसूस हुए इन झटकों के बाद लोग सहमे हुए हैं। पहला झटका 10:04 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 5 आंकी गई। उसके पश्चात 11:03 पर दूसरा झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 2.8 आंकी गई। वहीं तीसरा झटका 11:52 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3 आंकी गई। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से वसूले जा रहे खालसा टैक्स को गलत बताया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल और पंजाब की सरकारों को इस विषय पर बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों राज्यों के नागरिकों का आपसी संपर्क और आवाजाही लगातार बनी रहती है। शिमला जिला में पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जिले की सभी पंचायत समितियों के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जबकि जिला परिषद शिमला के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में होगा। जिला की 13 पंचायत समितियों चौपाल, ननखड़ी, रामपुर, रोहड़ू, ठियोग, जुब्बल, कोटखाई, कुपबी, बसंतपुर, मशोबरा, ननखड़ी, छोहारा और टूटू में संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों की निगरानी में नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। देश सहित प्रदेश भर में जनगणना 2026 का कार्य जारी है। जनगणना को अधिक सटीक व पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। हमारे ऊना जिला संवाददाता ने बताया कि ऊना जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
3: जनगणना 2026 के लिए ऊना जिला प्रशासन द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस माह के आरंभ से 15 तारीख तक जिले के नागरिकों की सुविधा के लिए स्वगणना की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है, जिसके तहत नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके उपरांत एक माह के दौरान प्रगणक घर घर जाकर वांछित जानकारी एकत्रित करेंगे। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जिले के सभी नागरिकों को जनगणना के प्रथम चरण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: लाहौल स्पीति जिला के काजा में आज से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 50 युवा भाग ले रहे हैं।
4: स्पीति के मुख्यालय काजा में आज से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा दादरा एवं नगर हवेली, दमन और द्वीप से आए 50 युवा भाग ले रहे हैं। ये युवा स्पीति के काजा खास, काजा सोमा, हल, शेगो, कीबर, रामाखास, लालुंग, हुरलिंग, ग्यू और लरी गांव में रहकर स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और विकास कार्यों को समझेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमांत भारत से जोड़ते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने मुख्यमंत्री से राजकीय महाविद्यालय कुकुमसेरी को बंद न करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि ये कॉलेज लाहौल घाटी का एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान है और इसके बंद होने से विशेषकर छात्राओं व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कॉलेज को बंद करने संबंधी अधिसूचना को जल्द रद्द करने का आश्वासन दिया है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से खबर दी है, हिम केयर योजना में निजी अस्पतालों का भुगतान रोकने के फैसले पर रोक, कोर्ट ने कहा विजिलेंस जांच का हवाला देकर राशि रोकना आदेश का उल्लंघन। पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के बयान को लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है, चिट्टा तस्कर नहीं सुधरे तो मिट्टी में मिला देंगे। दैनिक भास्कर की एक खबर है पंचायत जनप्रतिनिधियों की शपथ व ट्रेनिंग को, पंचायती राज विभाग ने मांगे 13 करोड़, मिले 3 करोड़। पूर्व सीएस की शिकायत पर रेरा के पूर्व चेयरमैन पर एफआईआर, दैनिक जागरण की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा कर रही है राज्य सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने और चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लेने का किया आह्वान। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में, लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिवा परियोजना के तहत 586 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान कर 10 जून से पहले कार्य पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से वसूले जा रहे खालसा टैक्स को गलत बताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
5: श्रोताओ, प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की गीतांजलि कार्यक्रम में।
6: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
7: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
9: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: जी हाँ श्रोताओ, गीतांजलि कार्यक्रम में आप डांस बीट्स पर झूम रहे हैं मेरे साथ आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र पर। प्रोग्राम है गीतांजलि।

0: हुआ झुमका।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोतो, गीतांजलि प्रोग्राम इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। जी हाँ, पॉजिटिव रहने के लिए कभी कभी हमारा किन्हीं मनपसंद गीतों पर झूमना न केवल हमारे मन के लिए अच्छा रहता है, बल्कि ये हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो चलिए, आइए झूमिए नाचे इस प्यारे से गीत पर।

श्रोता फिल्मी गीतों पर इस वक्त आप झूम रहे हैं मेरे साथ आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। और ये डांस जो है ना, वो हमारे तनाव को कम करता है, हमारे मूड्स को अच्छा करता है और हमारे हार्मोन्स को भी कंट्रोल में रखता है।

गीतांजलि कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं कमाल खान और अमित मिश्रा की आवाजों में ट्यूबलाइट फिल्म से ये गीत। एंजॉय कीजिए और दिल से यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर।

श्रोतो, इसी प्यारे से गीत के साथ आज का गीतांजलि कार्यक्रम अपनी दोस्त को यहीं पर संपन्न करने की दीजिए इजाजत। लेकिन आप कहीं मत जाइए, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर नेक्स्ट पेशकश के लिए। ना

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। शुद्ध आज का फिल्म संगीत लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन।

सुनिधि चौहान और अभिजीत की आवाज़ों में आपने सुना इस गीत को। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत, हम आपको सुनवा रहे हैं बद्रीनाथ की दुल्हन फिल्म से।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। तो लीजिए, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बादशाहों फिल्म से।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पहाड़ों के सुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं हिमाचली गीत पहाड़ों के सुर, अपनी दोस्त सुमन के साथ। लीजिए कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
2: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
2: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
2: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के निकट पोवाबो गांव में वन विभाग द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित कमियाना हिल टॉप नेचर ट्रेल के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। करीब 8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस परियोजना में 2.5 किलोमीटर लंबा प्रकृति पथ विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता, प्रकृति के प्रति रुचि, जैव विविधता संरक्षण व सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत 16 सड़कों के निर्माण के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों व पेंशनरों से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों पर चर्चा संभावित है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने व सृजित करने पर भी बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती मतदाताओं की जागरूकता और सहभागिता पर निर्भर करती है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने और चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव का आधार है।
1: शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव का आधार है और शुद्ध मतदाता सूची में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फॉरेनर्स, इनका स्थान नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी भारत का नागरिक 18 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो और उस मतदान केंद्र के आसपास रहता हो, उसका नाम अवश्य होना चाहिए।
0: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से वसूले जा रहे खालसा टैक्स को गलत बताया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल और पंजाब की सरकारों को इस विषय पर बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कांगड़ा व चंबा सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीती रात 10 बजे के बाद भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है और इसका केंद्र 32.289 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 76.434 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मात्र 5 किलोमीटर की कम गहराई पर स्थित था। हालांकि इस भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि भूकंप के 3 झटकों से लोग सहम गए।
2: चंबा जिला में 2 घंटे के अंतराल के बीच आए भूकंप के 3 झटकों ने जिलावासियों को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि इन झटकों से कहीं भी किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन एक के बाद एक महसूस हुए इन झटकों के बाद लोग सहमे हुए हैं। पहला झटका 10:04 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 5 आंकी गई। उसके पश्चात 11:03 पर दूसरा झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 2.8 आंकी गई। वहीं तीसरा झटका 11:52 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3 आंकी गई। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: शिमला जिला में पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जिले की सभी पंचायत समितियों के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जबकि जिला परिषद शिमला के निर्वाचन सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में होगा। जिला की 13 पंचायत समितियों में संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। लाहौल स्पीति जिला के काजा में आज से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 50 युवा भाग ले रहे हैं।
3: स्पीति के मुख्यालय काजा में आज से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा दादरा एवं नगर हवेली, दमन और द्वीप से आए 50 युवा भाग ले रहे हैं। ये युवा स्पीति के काजा खास, काजा सोमा, हल, शेगो, कीबर, रामा खास, लालुंग, हुरलिंग, ग्यू और लरी गाँव में रहकर स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और विकास कार्यों को समझेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमांत भारत से जोड़ते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं पहाड़ों के सुर। फिर से आपको लिए चलते हैं सुरों की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, और बहुत ही मीठे सुर गायकों ने दिए हैं। तो आइए अब रोशनी देवी की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा हिमाचली गीत।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं जय हिंद गीतमाला।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं जय हिंद गीतमाला। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से इस गीत को आप सुन रहे हैं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो लीजिए, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको, देशभक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू और आदित्य नारायण की आवाज़ों में।

सैनिक साथियों, इस गीत को आपने सुना शान, प्रिया और नीरज की आवाज़ों में, और मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से इस गीत को हमने लिया था। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मेजर साहब फिल्म से, उसे उसके पहले लेते हैं एक अंतराल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। बहने सुनेगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी। सखी आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी जानी पहचानी सखी सुमन। कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी, माफ कीजिएगा घर परिवार, पहले हुआ करता था नाम, थोड़ा सा एक जुबा पे चढ़ गया है नाम, तो बार बार वही निकलता है। खैर, बदलाव जीवन का नियम है और बदलाव हो चुका है, तो हमने सखियों अपने कार्यक्रम का नाम बदलकर सुनो सखी रख दिया है, क्योंकि सखियां हमारे कार्यक्रम को बहुत ही सुनती हैं, बहुत ही सराहती हैं। तो सखी, इस कार्यक्रम में एक बार फिर से अपनी प्यारी सी सखियों को हमारी ओर से प्यारी सी नमस्ते। नए तरीके के साथ, नए बदलाव के साथ आज हम आपसे रूबरू होने जा रही हैं। और जिंदगी में सभी कहते हैं बदलाव बेहद ज़रूरी होता है। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, तरीके बदलते रहते हैं, हमारी समझ बदलती रहती है, हर चीज़ बदलती है, और जीवन को किस तरह से हम बनाना चाहते हैं ये हम सभी पर निर्भर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से चलाना चाहते हैं या किस तरह से जीती हैं। ज़िंदगी को हम सभी अलग अलग तरीके से जीना चाहते हैं, खुश रहकर हर कोई जीना चाहता है ताकि ज़िंदगी हंसी लगे, और बोझ समझकर जिएंगे तो ज़िंदगी बोरियत से भर जाएगी। तो सखियों, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारी जो सखियां हैं बोरियत से इस प्यारे से जीवन को जिए। हम चाहते हैं हमारी सखियां हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए इस प्यारे से जीवन को एंजॉय करें। तो सखियों, तो थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हम कार्यक्रम में आप सभी का मनोरंजन भी करवाएंगे, क्योंकि हम प्यारे प्यारे गीत हर बार अपने साथ लेकर आते हैं। जैसे हमने सखियों बदलाव की बात की, तो अब हमने अपने कार्यक्रमों में बदलाव कर दिया है। शायद आज नए महीने में मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, तो आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज दिन जो है शनिवार का है, तो उस शनिवार को हम अपने कार्यक्रम में हर बार शामिल किया करेंगे माँ की चिट्ठी, साथ ही साथ माँ की यादों को ताज़ा किया करेंगे, गांव की मिट्टी, बचपन के दोस्त, उनसे मिलना मिलाना और बहुत सारी सुनहरी बातों को लेकर हम आपके पास आ चुके हैं, आपके घर द्वार में आ चुके हैं अपनी आवाज़ के माध्यम से। वैसे हमारी बहुत सारी सखियों को आवाज़ से पता लग जाता है, चल जाता है पता कि कौन सखी आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी है, लेकिन आए दिन नई नई सखियाँ हमारे साथ जुड़ती रहती हैं। तो उनकी जानकारी के लिए सखियों एक बार फिर से बता दूं कि आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सखी सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और कार्यक्रम में एक प्यारी सी चिट्ठी हमने शामिल करने के लिए कहा है, वो चिट्ठी है माँ की। एक माँ जब अपनी बेटी को एक चिट्ठी लिखती है तो बहुत सारे भाव उसमें वो व्यक्त करती है, और उस बेटी को चिट्ठी लिखती है जो उसने पढ़ने के लिए बाहर भेजी है या अपने से थोड़ा सा दूर कर दी है। क्योंकि हमारी सखियां सभी जानती हैं कि जब हम बेटियों को शादियां कर देते हैं तो हमसे थोड़ी सी दूर हो जाती है, दिल के बहुत करीब होती है लेकिन थोड़ी सी दूर हो जाती है। खैर, दूर आजकल बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि फ़ोन एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन गया है जिससे हमारी बेटियाँ बिल्कुल हमें अपने पास, अपने दिल के करीब ही लगती हैं। जब मन चाहा बात कर ली, जब मन चाहा उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से हम देख भी लेते हैं। सखियों, माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा होता है, तो जल्दी से इस रिश्ते को और थोड़ा सा गहरा करते हैं और थोड़ा सा मजबूत करते हैं, और इस तरह से अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेते हैं एक कागज और पत्र और लिख डालते हैं अपनी प्यारी बिटिया को एक प्यारा सा सुनहरी सा पत्र, बेटी के नाम, उसमें थोड़ा सी भावुकता भी होगी और प्रेरणादायक पत्र हम कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं। सुखी, जैसे ही माँ एक कागज और पेन को अपने हाथ में लेती है और बैठ जाती है अपनी प्यारी बिटिया को पत्र लिखने के लिए, मेरी प्यारी और दुलारी सी बेटी, ढेर सारा प्यार। प्यार तो खैर हम माएँ माताएं अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को देती ही हैं, लेकिन जब दूर बैठी हो तो हमारा प्यार जो है दोगुना बढ़ जाता है। इस पत्र के जरिए कैसी हो तुम, किस हाल में हो, और परिवार वालों को याद करती हो या नहीं? भाई, हमें तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है, हर समय तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। ठीक से खाती होगी हमारी बिटिया कि नहीं, बनाती खाना है या नहीं, कहीं लापरवाह तो नहीं हो गई है? खैर बिटिया, ये माँ बाप का
कहना होता है कि अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं, हमेशा समझाते हैं, चाहे बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए वो छोटे ही रहते हैं। उन्हें हमेशा ये बताते हैं कि आपने हर काम अपना समय पर करना है, समय पर खाना है, समय पर पीना है और समय पर रेस्ट करनी है। और हाँ, खाना पीना ही नहीं है, इसके साथ जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं उन्हें पढ़ाई करनी है। जो बेटियाँ शादी कर चुकी हैं, अपने ससुराल में हैं, उनको उनकी माताएं हमेशा ये बताती हैं कि ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। बिल्कुल इसी तरह से कहती है ना हमारी सभी की माएँ, हम भी अपने बच्चों को यही कहते हैं, हमारी माँ भी यही कहा करती थी। घर का सुख आराम बाहर नहीं मिलता है, हर कोई हमेशा साथ नहीं रहता है, माता पिता हो या फिर हो रिश्तेदार हमेशा अच्छी राह देते हैं। ज़िंदगी का सफ़र काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सही तरीके से चले तो वो भी आसान लगता है। हर काम हमें करने आने चाहिए, बेटा हो या बेटी दोनों को काम सिखाने चाहिए। और आज यूं ही मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि बेटी बैठे बैठे तुम्हारी याद आ गई, पुरानी एल्बम खोलकर बैठ गई तुम्हारी तस्वीरें देखने, कब तुम इतनी सी थी और कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। समय का चक्र बहुत ही जल्दी घूमता चला और वो दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार गोद में लिया था, वो एहसास एक बहुत ही प्यारा सा एहसास था, बहुत सुकून था। आज भी जब याद करती हूँ तो वो खुशी जो थी वो मैं भूल नहीं पाती हूँ। जब मैंने तुम्हें अपनी गोद में पहली बार लिया था, मेरी प्यारी प्रिंसेस जब मुझे मिल गई थी। तो बिटिया बहुत सारी बातें अभी मुझे अपने पत्र में तुम्हें लिखनी है, लिखने बैठ चुकी हूँ, थोड़ा सोच लेती हूँ। सोचते सोचते मन कर रहा है कि मेरे साथ तो मेरी सखियाँ भी जुड़ी हैं, तो सखियाँ सोच रही होंगी कि आज हमारी सखी जो है खुद तो पत्र लिख रही है और हमें भी अपनी बातों में हमें भी उलझा कर बैठी हुई है। तो सखियों उलझाना तो पड़ेगा, क्योंकि बेटियाँ होती ही इतनी प्यारी हैं, उनके लिए मन में बहुत सारे भाव होते हैं, उन्हें व्यक्त करना चाहिए, लेकिन थोड़े से अपने भावों को देते हैं विराम और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। तो सखियों आप जुड़ी रहें सुनो सखी कार्यक्रम के साथ। तो लीजिए सुनो सखी कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

सखियो, तारों की बात गीत में की गई है। तारे तो आसमां पर भी होते हैं, लेकिन नन्हे मुन्ने तारे हमारी गोद में भी होते हैं, हमारे सभी के घरों पर होते हैं। ढेर सारा प्यार हम अपने बच्चों को देते हैं, लड़का हो या लड़की, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। खैर, पहले के समय की बात करें तो पहले के समय में लड़कियों को ज़्यादा प्यार नहीं किया जाता था, लड़कों को किया जाता था। लेकिन समय का बदलाव हुआ है, जैसे हमने अपने कार्यक्रम में बदलाव किया है, ठीक उसी तरह से समय ने बदलाव किया है और अब बराबर का हक और बराबर का प्यार लड़का लड़की दोनों को मिलता है। देखो सखियो, कभी समय के बाद जब हम मिलते हैं तो ढेर सारी बातें हमारी होती हैं, और बातें जब शुरू होती हैं तो कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हैं। बातों के चलते मुझे फिर से याद आ गया कि आज तो हम अपनी प्यारी दुलारी बिटिया को पत्र भी लिख रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। फिर से वापिस आते हैं क्योंकि पेन और कागज पकड़े हम बैठे हैं अपनी बिटिया को पत्र लिखने के लिए। तो जल्दी से फिर से अपने पत्र की ओर आते हैं और अपनी बेटी को ये हम बताते हैं कि बिटिया, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, उनमें से कुछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और हाँ, कुछ तुम्हारी आलोचना भी करेंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी समझदारी से चलना है। वैसे तो मेरी गुड़िया बहुत ही समझदार है और समझदारी होना बेहद ज़रूरी है, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा जाता है, और कहें तो माँ के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता है, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। और जैसे मैंने अभी बात की, तुम्हें समझाया कि कुछ आलोचना करने वाले मिलेंगे तो तुम्हारे कदमों को रोकने वाले भी तुम्हें मिलेंगे, बस इस समय में तुम्हें समझदारी से चलना है। इंसान पहचानने की परख तुम्हें आनी चाहिए, अपना अच्छा बुरा वैसे तो मैंने तुम्हें समझा ही रखा है, और फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना अपना, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। जिंदगी में तुम्हें जब लगे कि तुम्हें अपनी माँ की सलाह लेनी है या माँ से कुछ पूछना है, तो बिना झिझक जैसे एक दोस्त से पूछते हैं, उस तरह से तुम मुझे अपने दिल की हर बात बता सकती हो। ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें कुछ दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो उसे अपने दिल में छुपाकर बैठ जाना है या टेंशन लेनी है, ज़्यादा तनाव में हो जाना है। तनाव तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को तनाव नहीं लेना चाहिए। और हाँ, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो अपनी माँ को जल्दी से फ़ोन करना, ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट से फ़ोन उठाना है और डायल करना है माँ का नंबर जिसमें तुमने लिखा है प्यारी सी माँ। जी हाँ, और सखियो, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, आप भी अपनी बेटियों को पत्र लिखती होंगी और आपकी बेटियों ने भी आपका नाम माँ से सेव किया होगा, प्यारी माँ, दुलारी माँ। बहुत सारे हम अपनी माँ के नाम लिखते हैं, बहुत प्यार से अपनी माँ को बुलाते हैं और बहुत प्यार जताते हैं अपनी माँ के साथ। फिर माँ होती ही ऐसी है, प्यार तो जताना ही पड़ता है, और खैर प्यार माँ पर ही आता है। बिटिया, दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे लोग हैं, हर किसी पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना है, अपनी सुरक्षा और सम्मान को हमेशा सबसे ऊपर रखना है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत बैठना, सहना मत, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि किसी बात को सहना मत, और तुम्हें पढ़ा लिखा कर मैंने इतना बड़ा कर दिया है कि तुम अपना अच्छा बुरा समझ सकती हो। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ तुम्हें आवाज़ उठानी है, तो आवाज़ तो खैर उठानी ही है, लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम में मेरे साथ मेरी सखियाँ भी जुड़ी है गुड़िया, तो उनको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

सखियो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापिस आते हैं। जब बिटिया को बहुत सारा प्यारा प्यार जो है अपनी माँ पर आता है, तो इसी तरह से अपनी माँ को गीत सुनाती है कि तू कितनी अच्छी है और कितनी प्यारी है। जी हाँ, जिनकी माँ इस समय मौजूद है, वो उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है। और कहते हैं कि भगवान को मानना या पूजना ज़रूरी है, लेकिन ये जिंदा भगवान हमारे पास होते हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, इन्हें इनके हर बात को मानना चाहिए। और कहते हैं इनकी की हुई सेवा ज़िंदगी में हमारे काम ही आती है। और जिन्होंने माँ बाप को की सेवा कर ली, उन्हें तीन धाम की यात्रा करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जी हाँ श्रोताओ, इसी तरह से होता है ना आप सभी के साथ। और जब हम माँ बाप की सेवा करते हैं तो बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छा हमें लगता है। एक समय होता है माता पिता हमारी सेवा करते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। और आप सभी से भी, हम बच्चों से, जो हमारे बच्चे बेटियां इस समय कार्यक्रम सुन रही हैं, उन्हें भी हम यही बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी रहते समय रहते अपने माँ बाप की सेवा कर लीजिए, कहीं बाद में पछतावा हमारे हाथ में ना रहे कि हमने माँ बाप को पूछा नहीं या उनकी सेवा नहीं की। समय बीतने के बाद बहुत याद आती है अपने माता पिता की। और खैर, समय के साथ हमें हर चीज़ करनी चाहिए, समय के साथ अपने माँ बाप को पूछना भी चाहिए। तो श्रोताओ, थोड़ा सा भावुकता भी अंदर जो है उमड़ रही है, तो थोड़ा सा अपनी बातों को देते हैं विराम और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में हम फिर से वापिस आते हैं, तो थोड़ा सा अपनी बिटिया को और समझा देते हैं, क्योंकि हम माता पिता का हमेशा यही फर्ज बनता है कि हम अपनी बेटियों को खूब समझाएं। तो सोशल मीडिया का बेटा जमाना है, हमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर समय तुम इसे अपने पास रखती हो या फिर इसे चलाती रहती हो, कभी कभार अपनी माँ को खूब सारी बातें भी लिख दिया करो। और इस चमकती दुनिया की बात करें तो इस चमकती दुनिया में लोग सच्चाई बहुत छिपाते हैं, इसलिए हर काम बड़ी ही समझदारी से करना, चाहे शादी का मामला हो और या फिर लड़का देखना हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे तुम्हें कुछ ऐसा पसंद आ जाता है तो फटाफट से अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, फिर माता पिता ये डिसाइड करेंगे, हम अभिभावक ये डिसाइड करते हैं कि लड़का देखना है, कुछ समय मिलने जुलने के बाद ही रिश्ता तय किया जाए तो ठीक रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में बैठे हैं, झूठी बातें करते हैं, इन लोभियों के चक्कर में हमें बिल्कुल नहीं आना है और थोड़ा सा अपना बचाव करना है। तो इन्हीं बातों के साथ चलते चलते फिर से थोड़ा सा सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

हम ऐसे बहुत सारी जो माताएं हैं उनकी बिटिया रूठी होगी तो थोड़ा सा अपनी बिटिया को मना ले, खैर मेरी बिटिया मेरे से रूठती नहीं है, बहुत प्यार अपनी माँ से करती है। इसी तरह से हम सभी को अपनी माँ से प्यार करना चाहिए, क्योंकि एक बार माँ बाप अगर बिछड़ गए तो दोबारा कहीं मिलते नहीं हैं, दिखते भी नहीं हैं, इसलिए उनकी कद्र जीते जी हमें करनी चाहिए।

सखियों इसी गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। अगली बार नई बातों नई जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया है सुनील शर्मा ने और प्रस्तुत करता है जितेंद्र पाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर, माफ कीजिएगा सुनो सखी। अब हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर का 1 बजा है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपये के विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है।

7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिण पंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जाँच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: underlying strength of the Indian economy built over the last 12 years. In a social media post, Mr. Singh said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has combined economic growth with stability, confidence, sustainability and credibility. In Punjab, 9 people were killed and 22 injured after their vehicle collided with a truck on the Firozpur-Fazilka road this morning. The victims, all members of the same family, were on their way to Bias to immerse the ashes of a deceased relative in the Bias River when the accident occurred. Senior police officials reached the accident site and rescue operations were carried out with the help of local residents. Delhi police has arrested a hotel cook in connection with the Malviya Nagar fire incident. The fire broke out at a hotel in Malviya Nagar on the 3rd of this month and claimed lives of 21 people while injuring 40 others. Earlier, the police had also arrested the hotel owner under charges of culpable homicide and other relevant sections. The police stated that further interrogation and investigation is underway. The 29th edition of the India-US Army-to-Army Staff Talks was held in Hawaii, co-chaired by Lieutenant General Rajiv Ghai, Deputy Chief of the Army Staff Strategy, and Lieutenant General Joel Vowell, and Deputy Commanding General of the U.S. Army Pacific. The discussions focused on strengthening bilateral defense cooperation, enhancing interoperability, expanding professional exchanges, and deepening military collaboration in support of shared security interests. In Andhra Pradesh, Janasena Party President Pavan Kalyan has announced Lingamaneni Ramesh as the party's candidate for the upcoming Rajya Sabha election. The announcement was made through an official statement issued by the party. L. Ramesh is scheduled to file his nomination papers today. According to party sources, Ramesh has been associated with Janasena and its leadership since 2015. The second edition of Mango Magic Festival, promotion and tasting event of Indian mangoes, was hosted in Seattle, United States today. Over 100 leading importers of Indian fruits, including senior leadership of US retailers like Costco, participated and tasted 7 premium varieties of Indian mangoes on display. India is currently the world's largest producer of mangoes, with an annual output of over 26 million metric tons and more than 1,000 named varieties. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Keralam and Mahi today. Heavy to very heavy rainfall conditions are also expected over parts of northeast India, Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. Similar conditions have been predicted over sub-Himalayan West Bengal, Telangana, Kokan, Goa, Madhya Maharashtra, Rayalaseema, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. The weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, NCR, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. And in hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे
2: हैं और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। सूरज रे, जलते रहना, बुझना मत, जलते रहना। कितना खूबसूरत तरीके से गीतकार ने इस गीत को लिखा है ना। हमारी श्रोता लिखती है कि कोई चीज खो जाए और ना मिले तो मन कैसा उदास हो जाता है। मन का रेगिस्तान उसी पल सूख जाता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर ऐसा नहीं होता। इंसान नियति के आगे झुककर जीने को बाध्य है। और जब हम जानते हैं कि हाल कैसा भी हो जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना ये जीवन थोड़ा हंसकर और थोड़ा भूल कर जिया जाए। जीवन को जितनी गंभीरता से लिया जाएगा उतनी ही पीड़ा होगी। इसे कुछ इस तरह से जियो कि यह उम्र एक सड़क है और हम सिर्फ चलने वाले हैं, हमें सिर्फ चलते जाना है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की इस आपाधापी में अक्सर मन का सागर उथला और शांत हो जाता है। उम्मीदों का किनारा छूटता सा लगता है और आत्मा एक सुकून भरी छांव की प्यासी हो जाती है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय जरा उस वृक्ष को देखिए जो खुद तेज धूप सहकर पथिकों को शीतल छाया देता है। यही इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सार है, दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश को बांटना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात कही है कि अगर कोई ये पता लगा ले कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं उसे वैज्ञानिक कहूंगी। सब कहते हैं मन मेरा है, मन मेरा है, लेकिन मन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और ये किससे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मन की उत्पत्ति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे अस्तित्व में आया। मन को ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों के बीच कड़ी यानी मध्यस्थ माना गया है। अंतःकरण के चार भाग, अंतःकरण के चार अंगों में से मन एक है, शेष तीन बुद्धि, चित्त और अहंकार। कार्य मन का मुख्य स्वभाव है संकल्प विकल्प, चंचलता दुविधा और इच्छाएं पैदा करना। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन के अंदर भी एक रेगिस्तान होता है, बाहर भले हरियाली हो लेकिन अंदर सूखी और गर्म रेत। मन का रेगिस्तान पानी नहीं मांगता, वो मांगता है बस इतना कि कोई उसे समझे बिना, जज किए बिना उस उदास मन को बस वो जो थक गया है मुस्कुराते उसे मुस्कुरा कर देखे। उदास मन के भीतर भी एक कोना होता है जहाँ उम्मीद की एक बेल जिसे सींचना पड़ता है, खुद से बात करके, खुद को समझ के और बेवजह खुद को ही गले लगाकर। आपने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, जो इसमें से आपका एक गाना हमसे मिलता है, सूरज रे जलते रहना। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, शब्द रे। सोना रे

आशा भोंसले मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। कितनी प्यारी इल्तजा कर रही है महबूबा अपने महबूब से, ओ मेरे सोनारे। जी तो आज के दो सवाल नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने अपनी टिप्पणियों में बहुत सारे गीत लिखे हैं जो हमारी गीतों से मेल भी खा रहे हैं और उसके अलावा भी गीत लिखे गए हैं, तो वही हमारा सवाल है कि रे का ये प्रयोग किन किन गीतों में हुआ है, आप बताइए। जैसे ही आप बताएंगे हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से और मेल खा जाए और इसके अलावा कुछ अन्य गीत भी हमारी नज़र में आ जाए। तो रे का प्रयोग यहाँ और फिल्मों में किन किन गीतों में किया गया है इसका उल्लेख आपको करना है, कम से कम 4 या 5 गीत। और दूसरा सवाल ये है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गीतकार जब लिखता है जैसे सो नारे सूरज रे, ये क्यों और कब। जैसा कि मैंने पहले कहा भी था, आप अपनी कल्पना से बताइए, अपने भावना से बताइए कि रे का ये काव्यात्मक रूप गीतकार कब कब गीतों में किस रूप में इस्तेमाल करता है। अगर वो कहता है सूरज रे चंदा रे मन रे तो क्यों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा कम से कम शब्दों में।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आधुनिक अंधी दौड़ की मरीचिका का उल्लेख करते हुए जीवन के दर्शन को बयां कर रही है। अंततः इस मृत तृष्णा का सुखांत सूर्य की उपमा संग प्रदान कर सुखद उपसंहार में समापन किया गया है। विषय पूर्णतः तथ्यपूर्ण और दार्शनिक है। अभिनव गीत चयन भी प्रशंसनीय है। अल्पकालीन सूचना पर भी आशा है कि यह संक्षिप्त इबारत सफर की गरिमा बरकरार रखेगा। बिल्कुल, ये आप सभी श्रोताओं पर है। हो सकता है आज का ये सफर थोड़ा छोटा हो जाए, आप सभी लोग कम से कम टिप्पणियां कर पाए क्योंकि आपको वक्त कम मिला, लेकिन जितना भी मिला उसी में हम इस सफर का आनंद उठाएंगे, क्यों है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में जीवन में छाई उदासी या ग्लानी को एक तरस या प्यास की उपमा के साथ उभारने की कोशिश हुई और एक शब्द को खास कर प्रयोग में लाया गया है गीतों के जरिए, वो भी खास है रे, यानी मन वो उदास हो या धीर कैसे धरे या हो, या सूरज जो जीवन की शक्ति के लिए अपने को जलाता रहे, यही जीवन की सच्चाई को उजागर करते हुए गाने होंगे। आपने भी कुछ गीतों का चयन किया है तो देखिएगा आपके गीत हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी ये पंक्तियां जीवन के एक बहुत ही गहरे और कड़वे सच को बेहद खूबसूरती से बयां कर रही है। मंदाकिनी जी, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अंदर से पूरी तरह रीते और थकावा महसूस करते हैं। ये ठहराव जिसे हम प्यास या खालीपन समझ रहे हैं वास्तव में खुद को भीतर से सींचने और एक नई ऊर्जा के साथ खिलने का अवसर है। हमें किसी बड़े चमत्कार की नहीं बल्कि अपनेपन और सांत्वना की बस एक छोटी सी मीठी बूंद की तलाश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मीठी बूंद की तलाश में हम पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं, वो मिलती है कि नहीं ये हमारे अपने अपने सोच और कहना चाहिए अनुभव पर निर्भर करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने श्रोताओं के मन को रेगिस्तान बना दिया। पोस्ट लगभग सिर्फ 45 मिनट पहले आई है। मेरे ख्याल से सभी उत्सुकता से आपकी राह देख रहे थे कि कब सुरीला सफर

की रेल आए, हम उसमें सवार हों, इबारत को देख अपनी जिज्ञासा की प्यास बुझाए। तो अब तो आप रेल में सवार हो गए हैं ना, चलिए करते हैं यात्रा शुरू। और हो गई है यात्रा शुरू, देखिए रेल हमारी चल पड़ी है फटाफट। एक श्रोता लिखते हैं कि अपने मन की उदासी को कोसने के बजाय खुद पर हौसला रखें और उगते सूरज की तरह चारों तरफ प्रकाश फैलाएं, अर्थात परिश्रम करें, आगे बढ़े। मन रे तू काहे न धीर धरे, आपने इस गीत का चयन किया है और वाकई हमारा अगला गीत यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बधाई जिन्होंने ये गीत पसंद किया है या अपनी पसंद में ये गीत शामिल किया है।

0: रोशन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। मोहम्मद रफी की आवाज थी और फिल्म का नाम था चित्रलेखा। कितना खूबसूरत गीत, गहरा और सुंदर। दार्शनिक प्रयोग यहाँ पर रे का, देखा आपने, रे का अर्थ यानी यहाँ मन या आत्मा से है। और यहाँ गीतकार जो साहिर लुधियानवी हैं, अंतरात्मा को एक दार्शनिक उपदेश दे रहे हैं। जो मन अशांत है उन्हें धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रे मन, तू धीरज क्यों नहीं धरता? इस जीवन की धूप छांव को किसने बांधा है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दे रे मन। मन को समझा, अपने आप को समझा। कितना गहरा गीत, और इस गीत को सुनकर तो मन को शांति मिलती ही है। आपको भी निश्चित रूप से बहुत गहरी शांति मिली होगी। और आप मन को समझा सकते हैं इस गीत को सुनकर कि इधर उधर व्यर्थ की दौड़ भाग में कुछ नहीं रखा, मन को शांत और सौम्य रखा जाए, वही जीवन का सार है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप इस रेगिस्तानी सफर में गर्मी में आज सुरीले गानों से मन की प्यास बुझाएंगी, मन को शीतलता मिलेगी। बहुत सुंदर। वहीं गीत एक श्रोता लिखते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की। नमस्कार, क्या बात है, आज सुरीला सफर बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा पोस्ट के लिए। अरे आप तो फिर भी इस सफर में शामिल हो गए, और क्या चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती रे, मंदाकिनी बहन रे, आप ही बताओ आज की पोस्ट इतनी देरी से क्यों आई। वैसे रोज सुबह आ जाती है, मगर इतनी छोटी सी इबारत भी नहीं होती है। सुरीला सफर में जुड़ रहे सभी के संग आपको मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आप हमारे साथ हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप पानी की बूंदे लेकर आई हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी। बाकी तो जब प्रोग्राम चलेगा तब पता चल जाएगा कि कितनी ठंडक मिलेगी। मिली ठंडक आपको? वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सूरज हमें जीवन दर्शन भी सिखाता है। सूरज हर दिन बिना थके अपना काम करता है। ये सिखाता है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्य से नहीं डिगना है, नहीं हटना है। रात कितनी भी लंबी हो और सवेरा जरूर आएगा। और इसी तरह हमारे जीवन में भी दुख के बाद सुख जरूर आता है। सूरज स्वयं जलकर भी संसार में प्रकाश बिखेर कर परोपकारी बनना सिखाता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत अनुरूप संभावित गाने, समय कम है इसलिए ज्यों ज्यों याद आएंगे जोड़ते जाएंगे। सूरज रे जलते रहना, फिल्म हरिश्चंद्र तारामती, मन रे तू काहे न धीर धरे, और आपने और भी गानों का बारे में लिखा है। तो हमारी जो आज की सवाल है, हमारा जो आज का सवाल है, उसमें हम आपके गीतों को शामिल करेंगे जो आपने रे के प्रयोग वाले गीत लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म नागमणि का गीत। इसे आवाज दी है प्रदीप ने। गीत को कवि प्रदीप ने ही लिखा है और धुन बनाई है अविनाश व्यास ने।
1: पिंजरे के पंछी
0: रे,

जी, तो सुना आपने कि कवि प्रदीप ने कितने दार्शनिक तरीके से ये बात कही है कि पिंजरे में बंद पक्षी और शरीर यानी दुनिया में फंसी मानव आत्मा की जो उन्होंने तुलना की है। आप देखिए कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी अपने पंखों के कटने और अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी आज़ादी छिन जाने का दर्द किसी को नहीं बता सकता, ठीक उसी तरह मानव शरीर में कैद आत्मा सांसारिक बंधनों और दुखों के कारण मौन रहकर भीतर ही भीतर तड़पती रहती है। तभी तो उन्होंने कहा, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। हमारे श्रोता लगातार अपनी बात कह रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रख रखे हैं और मुझे लगता है बहुत गहराई में चले गए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहीं उलझ गए हैं हम मंदाकिनी जी शब्द जाल में। जब आप होती हैं तो कुछ नया होता है। एक बजे का बस इंतज़ार है, हम नहीं उलझेंगे। बिल्कुल मत उलझिए, बस आप हमारे साथ बिल्कुल आराम से सफ़र में रहिए और आरामदेह सफ़र का मज़ा लीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मन इतना सूख जाता है कि आंखों में आंसू होते हुए भी प्यास नहीं बुझती। भीड़ के शोर में चलते चलते अपनी ही आवाज़ कहीं खो जाती है। हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है पर भीतर कोई चुपचाप टूट रहा होता है। कोई रोटी का प्यासा है, कोई मोहब्बत का, कोई बस एक अपने का। मन ढूंढता है एक मीठी सी बूंद जो माथे पर हाथ रखकर कह दे, मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मगर अक्सर शाम ढल जाती है और वो बूंद नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। फिर नज़र उठती है आसमान की ओर, जहाँ सूरज रोज़ जलता है, अपने हिस्से की आग सहकर दुनिया को उजाला देता है। तब दिल रो पड़ता है कि शायद जीवन का अर्थ यही है, अपने दर्द को सीने में रखकर भी किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाना। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि सबसे ज्यादा रोशनी बांटते हैं जो, अक्सर उनकी तन्हाइयों का हाल कोई नहीं पूछता। क्या बात कह दी आपने, मेरी आंखें नम हो गई हैं, गला रुंध गया है। सचमुच यही होता है कि जो दूसरों की चिंता और फिक्र करता है उसके लिए आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहती हूं, वो आपने कह दिया है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की पोस्ट 12 बजे के बाद आई है। रोज की तरह हम तो पोस्ट का सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पोस्ट 10 बजे के करीब आ जाती है, आज बहुत देर कर दी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर के अंदर दर्द भरे उदासी के सॉन्ग शायद सुनने को मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं, आज हम कुछ दर्शन पर बात कर रहे हैं, जिंदगी का दर्शन, जिसे आप भी पसंद करते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूर्य केवल आकाशीय पिंड नहीं है बल्कि अनंत ऊर्जा, प्रकाश, जीवन और त्याग का सकारात्मक प्रतीक है। सूर्य निरंतर गतिमान और कर्मशील है, इसे आलस्य त्याग कर निरंतर कर्म करने और ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। ये निराशा के काले बादलों को चीर कर रोशनी और प्रकाश रूपी किरणों को विस्तारित कर आशा का संचार कर देता है। जी बिल्कुल, आशा का संचार तो आपने भी कर दिया है। इतने कम समय में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर सफर में हमारे साथ हैं, और क्या चाहिए। आपका ये जो है ना, मैं हूं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, दवा का। और जब हमारे श्रोता हमारे साथ हैं तो रे का प्रयोग भी तो श्रोता रे बने रहना है ना। चलिए तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए फटाफट कि रे का प्रयोग और किन किन गीतों में हुआ है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, हम पढ़ेंगे जल्द ही। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, आप क्या सोचते हैं गीतकार कब रे का प्रयोग करता है। जैसे मैंने कहा, श्रोता रे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया। जी एल रावल के बोल थे और सोनिक ओमी का संगीत। कितना गहरा और दर्द भरा गीत था। जब हम किसी को पुकारते हैं और कोई नहीं आता तो जी जान से हम पुकार लगा देते हैं, आ जा रे आ जा रे आ जा रे, है ना। बस यही है रे का प्रयोग, जो आपको बताना है कि गीतकार ने किन किन अर्थों में किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में किसी भी शब्द का चयन नहीं करना है क्योंकि रे जैसे संबोधन परक शब्दों से ही संबंधित गीत बजाए जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान तो अपने आप में ही सूखा होता है और इसीलिए उसे मरुस्थल कहा जाता है। ऐसे में सहारा का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों का नाम सुना है, किंतु मन का रेगिस्तान प्यासा हो यह तो संभव है, लेकिन एक तो रेगिस्तान वैसे ही सूखा, दूसरे सूखे में और सूखा। बात कुछ समझ में नहीं आई भाई। जहां सूखा होता है वहां भूख प्यास के लिए धरती ही नहीं, अभी तो हर जीव ही एक बूंद के लिए तरसते हैं। लेकिन अब भी ये तो कहावत प्रचलित है कि जहां कोई नहीं वहां रेड़ का ही पेड़ प्रधान हो जाया करता है। फिर भी क्या बात है, बहुत गहरे में चले गए आप तो। देखिए, हम जब हमारा मन रेगिस्तान हो जाता है यानी सूखा हो जाता है तो हम मिठास को तरसते हैं, एक बूंद मिल जाए प्यार की, एक बूंद पानी की, एक बूंद जिसे हम कह सकते हैं, और वो बूंद हमें सुरीला सफर में मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है लेकिन आपकी प्यार की बूंद, या यूं कहें कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है वो बूंद काफ़ी नहीं है क्या हमारे जीने के लिए, सोचिएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अरे आना तो था ही, आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पोस्ट है आपकी, और एक श्रोता लिखते हैं कि विशेष रूप से ये कहना है मुझे कि कल शाम को 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आपने बहुत मस्त गीत सुनवाए। अच्छा, कल आप सुन रही थी, बहुत आभार और शुक्रिया आप सबकी अथक मेहनत को सलाम। बहुत शुक्रिया आपको भी कि आप भी तन मन धन लगाकर हमें सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज छोटी सी इबारत और अच्छा अंदाज आपने दे दिया रे शब्द के गाने, अब ये सोचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद, पर आप हैं तो हम लोग तुक्का लगाना बेकार ही मानेंगे। आप कहाँ कहाँ से अनसुने गाने खोज खोज के लाती हैं, हम लोग अवाक रह जाते हैं। आपको पसंद है यही हमारे लिए काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम तो दिलचस्प पहेली जैसा लग रहा है।

आपके संकेत के अनुसार आज के सभी गीतों में रे शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी गीतों में रे बहुत ही आम है, इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मन रे तू काहे ना पिए, धीर धरे ओरे पिया, रे कबीरा, नैना रे, सजन रे, चलत मुसाफिर मोहलिया रे। क्या बात है, बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपकी इबारत का मुख्य संदेश गीतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मन उदास हो, जीवन में आशा की छोटी सी किरण तलाशनी हो, सूरज का उदाहरण देकर आपने यही बताया कि जीवन का सार संघर्ष के बावजूद प्रकाश बांटना है। बिल्कुल, आप लोगों के विचार लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय का ध्यान भी हमें रखना होता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं। मन का रेगिस्तान भी एक दिन खिल जाएगा, सब्र की बारिश से हर जख्म सिल जाएगा, तो खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, तेरे भीतर का सूरज भी एक दिन मिल जाएगा। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पीतल की मोरी गागरी दिल्ली से मोल मंगाई रे, दो बूंद पानी का। अच्छा, इस गीत में रेगिस्तान है, पानी के लिए कश्मकश भी है, प्यास भी है और रे शब्द भी आ रहा है, तो पूर्ण रूप से ये गीत शामिल होना चाहिए। आपकी लिस्ट में गीत शामिल हो गया है, और क्या चाहिए। देखिए ना, आप कितना गहरा उतर कर इस गीत को उठा लाए हैं कहीं से। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़े समय के लिए मन उदास हो गया था, क्योंकि रोजाना सुरीला सफर की पोस्ट 8 से 10 घंटे पहले आ जाती है। आज 12 बजे के बाद सुहाना सफर की पोस्ट आई, जो पढ़कर मन प्रफुल्लित तो हो गया। मेरा मन अगर उदास हो जाता है तो मैं हमारे घर से नजदीक लाखोटा तालाब के पार्क में खुली हवा में टहलने चला जाता हूँ। वहाँ रेडियो बजता रहता है, FM रेडियो बजता रहता है, और मैं मधुर गाने सुनता हूँ, मन को शांति मिलती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है।

वाणिज्य राम को आपने सुना, फिल्म का नाम था गुड्डी और गुलजार साहब के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी आवाज में एक खनक है, आप मुस्कुराते हुए गीतों को लेकर आती हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज की इबारत कुछ अलग सी बड़ी प्यारी लग रही है, बस हम थोड़े बिजी हैं पर आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहिएगा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट के इंतजार का मन प्यासा बन गया था, मानो दिल का रेगिस्तान बन गया था, अब पोस्ट आ गई है तो आपने कुछ गाने लिखे हैं जो हमने पूछे थे। मन रे बिल्कुल बूझ मेरा क्या नाव रे, क्या बात है, मेघा रे बदरा छाए रे, खाई है रे हमने कसम, जा जा रे वाह और बोले रे पपीहरा, तो आपकी पसंद हमसे मिल गई है। आजा रे प्यार पुकारे, ये अगला गीत अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही था, दिल पुकारे आ रे ओ माझी रे पंछी रे, क्या बात है, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, ऐसे करके सखीरी सुन बोले पपिया उस पार। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत शानदार आपने गीत मालिका तैयार की है जो रे पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे मन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आपने लिखा है कि बहुत सारे गाने हैं जो रे पर आधारित है। मेरे मन से जुड़ा टॉपिक है, आज तो रेगिस्तान कभी मन हो जाता है लेकिन जीना है तो हंस के जीना है, इसी फंडे पर मैं हमेशा जीती हूँ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए और मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे न धीर धीरे, ये गाना आपकी लिस्ट में है, बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही दिल को छू गया है, जहां आपने रे का संबोधन वाले गीत चुने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज चंदा रे कभी तो जमी पे आ बैठेंगे बात करेंगे, बिल्कुल आपने ए हरिहरन की आवाज़ में ये गीत पसंद किया है, नई फिल्म से गीत है, बहुत सुंदर गीत आपने चुना है चंदा रे चंदा रे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं ओ माझी रे अपना किनारा नदिया करे धरा, अच्छा ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, चंदा रे दिल से रे दिल से रे, बिल्कुल सही आपका चुनाव भी बहुत सही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना चंदा रे मेरी मोरी पतियां ले जा, वाह जा जा रे जा बालम वाह, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, जरा सा झूम लू मैं ना रे बाबा ना, क्या बात है, बहुत नया गाना आपने चुना है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैम आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, अरे वाह आपको दिख रही हूँ मैं हंसते हुए शुक्रिया मेहरबानी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ओ मेरे सोना रे ये गाना तो मेरी लिस्ट में नहीं था, क्यों भाई क्यों नहीं था, ये गाना तो बहुत ही पॉपुलर है और सभी को पसंद आता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी लिस्ट में जो गाने थे वो तो लिखिए जनाब। एक श्रोता लिखते हैं माई री चंदा रे आओ रे ओरे पिया, ये गाने नदिया चले चले रे धारा, रात का समा झूमे चंद्रमा मन मेरा नाचे रे, वाह क्या बात है, कहाँ पकड़ा है आपने रे को, बहुत सुंदर। और वहीं और भी श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, रे मन सुर में गा ओरे ताल मिले नदी के जल में, यह तो हमने भी गीत चुना था फिर हमने इसे हटाया, पिया तो से नैना लागे रे, क्या बात है, रे माँ तेरे मेरे नैना सावन भादो। और वहीं आप लिखते हैं तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के रे, अच्छा इसमें भी आप सुन रहे हैं, और यानी आज आपने रे जिनमें रे है और मन की प्यास उदासी उम्मीद की बात है, मंदाकिनी जी आज आपने वो गाने सुनकर हमें बहुत आनंदित किया है, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। अब आपने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, और भी बहुत सारे श्रोता अपनी पसंद के गीत लिख रहे हैं जहां रे का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब किन किन गीतों में इस्तेमाल किया गया है। गीतों का नाम तो आपने लिख दिया है लेकिन कब इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका छोटा सा बताइए ना बात। अगला गीत हमने चुना है सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में, शैलेंद्र का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है पूनम की रात। साथी रे सुनिए आप। साथी रे ये रे हमारी जान ले लेता है ना,

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपको हार्दिक नमस्कार और अक्षर रे का जो आज स्पेशल प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार लग रहा है। आपने फिल्म आ का गीत आजा रे अब मेरा दिल पुकारा रो रो के गम भी हारा ये गीत पसंद किया है और लिखा है कि इसमें रे का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, ये गाना भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नया गाना है। आप एक श्रोता हमारे सवाल का जवाब देते हैं दूसरे सवाल का कि रे शब्द का काव्यात्मक आविष्करण खुशी उदासी आशा निराशा चैतन्य वैराग्य अभिमान प्यार स्नेह के अनुभव में अपने आप बखूबी हो जाता है गीतों के माध्यम से गीतकारों के माध्यम से, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेघारे मेघारे ये गाना आ जाए तो इतनी गर्मी में थोड़ी ठंडक मिल जाए। हाँ, आज तो आपको ये गाना नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है अगले किसी और कार्यक्रम में हम आपके लिए गाना लेकर आए। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब कोई गीतकार किसी अमूर्त भावना जैसे कि मन है, सूरज है, चांद है को व्यक्ति के रूप में अपने खास प्रेमी के रूप में, महबूब के रूप में, अपनेपन के रूप में देखता है, तब वो रे लगाकर उसे संबोधित करता है ताकि वो जो बात, वो जो प्रार्थना, वो जो इल्तिजा, वो जो प्रेम की बौछार, वो जो भी संदेश देना चाहता है वो रे के माध्यम से और मजबूत रूप से उस व्यक्ति तक, उस इंसान तक पहुंच जाता है। जैसे सूरज रे जलते रहना है ना, रे का प्रयोग। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा हुआ, जसपाल सिंह की आवाज, फिल्म का नाम श्याम तेरे कितने नाम।

0: मन से मन का बंधन सच्चा, बाकी बंधन झूठे, कभी अपना साथ न छूटे।
1: जी हाँ, कभी अपना साथ न छूटे। प्यारे श्रोताओं रे, बने रहना इस सुरीले सफर में हमारे साथ, कभी अपना साथ न छूटे। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस सफर को और लंबा करने का, तो बस यही थम जाते हैं इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर से। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।

दोस्तों आइए विचार करें कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम किस तरह से चलाई जाए। पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव बहुत ही घातक हैं। वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, हवा में विषैले कण घुल रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। क्या अब भी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? अगर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अभी भी हम सजग नहीं हुए तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह जाएगी।

दोस्तों, जिस तरह हमारा जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे कार्यकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गाँव के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाएं।

पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए त्रिवेणी तट पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपें। लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे, तो आपका मन भी खुशियों से झूम उठेगा।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। RBI ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेट का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
6: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
9: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है बारिश।

कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है चंगेज खां, आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंगेज खां। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल। आवाजें हैं गीता दत्त और मन्ना डे की। फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे।

राम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां, राधा संग कान्हा का रास जहां चला रे, इस झूठी दुनिया को छोड़वा।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे, दिल उनको दे आए।
3: यह आवाज आशा भोंसले की और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिज्वी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और आइए अब सुनते हैं दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल स्वर। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल हैं SH बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार व सामायिक चर्चा रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक राष्ट्रीय मिशन है। वे पंचानद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र द्वारा भारत 2047 विकसित भारत का संकल्प विषय पर आयोजित व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राज्यपाल ने भारत की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने डिजिटल तकनीक, नवाचार, स्टार्टअप, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने और सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान गांव गांव जाकर किसानों को संतुलित खाद उपयोग, नकली पेस्टिसाइड की पहचान और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देंगे। उन्होंने सभी किसानों से आग्रह किया है कि इस अभियान से जुड़कर वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खाद का उपयोग करें और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें।
2: अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गाँव में कृषि

0: बिना तथ्यों व पर्याप्त विचार विमर्श लगाए गए आरोप संगठन व सरकार दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा दिए गए इस्तीफे को कांग्रेस नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में सभी पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
1: जो कल स्टेटमेंट नीरज भारती ने दी है उस स्टेटमेंट से ठीक मैसेज जो है वो नहीं है, क्योंकि राजनीति में कोई छोटा काम नहीं हुआ वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार के एलिगेशन लगाना हमारी पार्टी की जो सरकार है उसके ऊपर अटैक की बात, हम इसको डिसअप्रूव करते हैं। तो मैं उसको भी ये राय दूंगा कि इस प्रकार के एलिगेशन और बगैर तथ्य को बिना सोचे समझे कोई बात करना, ये पार्टी संगठन और पार्टी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है। जो कुछ उसका बयान इस चीज के ऊपर है उसका मैं खंडन करता हूँ।
0: उद्योग विभाग द्वारा शिमला जिला की थानाधार पंचायत में डिजिटल मार्केटिंग, जेम पोर्टल व एमएससी सीडीपी योजना पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों व एमएसएमई इकाइयों को डिजिटल सशक्तिकरण, सरकारी खरीद प्लेटफॉर्म और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक करना रहा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने आज कुछ क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रदेश के शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों ने आज पद व गोपनीयता की शपथ ली। शिमला के बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसमें सभी 25 वार्डों के सदस्य शामिल रहे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है हमीरपुर जिले की चिट्ठी। लेखक हैं हरीश नंदा और वाचिका हैं प्रभा शर्मा।
0: विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर हमीरपुर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा बचत भवन में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 66 लोगों ने रक्तदान किया। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ ने सभी लोगों को विश्व रेडक्रॉस दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये संस्था हमेशा असहाय व जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर में अधिक से अधिक लोगों को रेडक्रॉस सोसाइटी से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इन लोगों से प्राप्त होने वाले अंशदान से असहाय व जरूरतमंद लोगों की अधिक से अधिक मदद की जा सके। जिला हमीरपुर की उपायुक्त व जनगणना अधिकारी गंधर्वा राठौड़ ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे भारत की 16वीं जनगणना की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में सहयोग करें, ताकि जिला की जनसंख्या का सही डाटा सामने आ सके। उपायुक्त ने बताया कि जिला हमीरपुर में भी जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में मकानों की गणना व सूचीकरण किया जाएगा। इसके लिए जनगणना अधिकारी 16 जून से 15 जुलाई तक घर घर दस्तक देंगे। उपायुक्त ने कहा कि इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और इसके पहले चरण में 1 जून से 15 जून तक लोगों के पास स्वगणना का विकल्प रहेगा। इस अवधि के दौरान लोग स्वयं भी सेल्फ एलिमिनेशन यानी स्व प्रगणना पोर्टल एमएसएससी सेंसिस जीओवी इन ऑन पर ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकेंगे। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने जिला मुख्यालय में विभिन्न संस्थाओं के परिसरों और मुख्य बाजार का निरीक्षण करके विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ एडीसी अभिषेक गर्ग भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने सर्वप्रथम जिला पुस्तकालय का निरीक्षण करके वहां युवाओं के लिए उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि इस परिसर में आम पाठकों और विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने कई विद्यार्थियों के साथ संवाद भी किया। प्राकृतिक खेती में सराहनीय कार्य कर रहे हमीरपुर के निकटवर्ती गांव हरनेर के ललित कालिया ने इस सीजन में

0: प्राकृतिक खेती से चने की खेती करके अच्छी खासी पैदावार हासिल करके अन्य किसानों के लिए एक मिसाल कायम की है। ललित कालिया ने बताया कि इस बार उन्होंने गेहूं के साथ ही चने की बुआई भी की थी। वे अपने खेतों में किसी भी तरह की रासायनिक खाद या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बार उन्हें गेहूं के साथ ही लगभग 75 किलोग्राम चने की पैदावार भी हुई है। इस चने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इससे पहले ललित कालिया ने प्राकृतिक खेती से ही मात्र 18 मरले जमीन पर गन्ना लगाकर पहले ही सीजन में लगभग 70 किलोग्राम शक्कर तैयार की थी। वे पुराने देसी बीजों का संरक्षण भी कर रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत देश की अमूल्य पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण व अभिलेखीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिला भाषा अधिकारी संतोष कुमार पटियाल ने कहा कि हमारे देश में आज भी अनेक प्राचीन व दुर्लभ पांडुलिपियां आम घरों, मंदिरों, मठों, निजी परिवारों, संस्थाओं तथा विभिन्न समुदायों के पास सुरक्षित हैं, किंतु उनका अभी तक कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार नहीं हो पाया है। अब संस्कृति मंत्रालय ने इन अमूल्य सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान आरंभ किया है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए आरंभ किए गए HPV टीकाकरण अभियान के तहत जिला में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की सभी लड़कियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने भी स्वयं फील्ड में उतर गई हैं। HPV वैक्सीन के प्रति आम महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए उपायुक्त द्वारा स्वास्थ्य खंड गलोड़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत पनसाई के गांव बेहा का दौरा किया। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहा पहुंची उपायुक्त ने गांव की महिलाओं से HPV वैक्सीनेशन और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि HPV वैक्सीन का टीका किशोरियों को जिंदगी भर सर्विकल कैंसर से जानलेवा रोग से बचा सकता है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों और अन्य सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त व कैशलेस इलाज हो सकता है। हमीरपुर जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने, और दत्तरेंगी भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है, आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकटे और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाह। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज़ सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: नाचो।
2: नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूँ तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा।
2: खुदा के लिए
1: कोई रहम नहीं, नाचो।
2: नहीं, नहीं, नहीं। इन मुगल शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूँ नाचो। गुलाम, इनके कोड़े लगाओ और भरे दरबार में नचाओ।
3: ये गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर कितना जुल्म है।
4: हाँ।
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी, आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब की चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंस ही जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलम पना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साए में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियायत तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कार्निक
1: कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमी बोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
2: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
1: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात व ताकत का सही अंदाजा हो सके, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
2: जी हाँ आलम परवर, आपकी बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्त फाश देनी चाहिए।
1: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं हम।
2: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
1: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
2: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाह भी हमारे साथ हो लेगी।
1: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर
2: जी, आलम पना,
1: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
2: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
1: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कमसिन अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
2: जो हुक्म वाली जा।
3: तस्लीम।
1: तस्लीमात तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम एमिली है, योर मैजेस्टी।
1: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम, योर?
3: जी, योर मैजेस्टी।
1: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
3: आलम पनाह, आलम पनाह।
1: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
3: जी जी हाँ, जान पाना, यहाँ बचपन से रही हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
1: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
3: ओ, हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल हैं, हम यहाँ आपकी पनाह में रहने चाहते हैं।
1: ठीक है एमली, तुम यहाँ रह सकती हो।
3: ओह थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: तुम्हें हमारे हरम में सब बेगमों के साथ रहना पड़ेगा, बाहर जाओगी तो पर्दे में जाना होगा।
3: ओह नो, नहीं नहीं, हम पर्दे में नहीं रह सकते, हम तो आजाद घूमने चाहते, हमारे कोई पर्दा नहीं करते।

0: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहां जब तक चाहो रह सकती हो।
1: ओ जयपाना, आप कितनी अच्छा है, कितना खूबसूरत है आप।
0: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
1: ओ शुक्रिया आलिम पिना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
0: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
2: जी हाँ जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
0: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
2: जी हाँ आलमपना, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
0: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं, लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो है ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
2: जी हाँ जहांपनाह, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
0: नवाब
2: जहांपनाह,
0: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
2: जी हाँ आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
0: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
2: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपे।
0: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
2: जी अली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिल तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
0: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
2: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
0: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन पदसात अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
2: बेशक आलमपना, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन पदसात अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहांपना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
0: जरूर नवाब।

0: बोलो बोलो अली कत्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
1: तुम्हारा मतलब एमली से है? क्या हुआ?
0: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
1: और अब क्या हुआ उसको?
0: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली हैं। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
1: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
0: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
1: ये तो बहुत संगीन मामला है।
0: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
1: इस वक्त वो कहां है?
0: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
1: उफ नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
0: आलमपना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
1: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले आलम पनाह को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कूच भी कर चुके थे।
1: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
0: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
1: कौन? सकीना बेगम? यहां? फौरन भेजो।
2: जी जहां पना।
3: आलम पना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
1: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहाँ क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
1: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
1: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलमपना।
1: हो, वो कमीनी कहाँ है?
3: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
1: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
0: जहांपना, जहांपना ने याद फरमाया।
1: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदसाद को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस सराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ, बराबर के खेमे में है वो बदसाद?
0: जी आलीजा, हुक्म की तामील होगी।
1: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
1: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलमपना की मर्जी।
0: आलमपना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे।

0: मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फेरिश्ते मेजर मुनरो को भेज चुकी है। घोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर
1: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो। शुजा, ये हाँ। ये क्या है?
0: ओह, जहां पना, ये तो अंग्रेजों की तोपें। पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
1: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
0: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है, धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
1: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खां, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूरे वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: जय पना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेज रियाया की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन, शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?

0: जहपना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: यो मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 मेरा मतलब है 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, खुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहंशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्टी की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खां को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहाँ पहुँचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुँचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना, ये मौजा धनौली है। यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे, ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर, जरा पता लगाओ।
0: आलम पना, ये आली जा वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमें हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलम पना, सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर, आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आईं।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी, वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

0: गुलाब की पंखुड़ियाँ। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजने को है और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़ाती रहती है।

मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊँ, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों हैं आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही है। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 2020 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता।
0: हाँ।
1: और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो था
0: नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग

0: करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला करते, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुलाओ, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेस आए, अभी टेरेस से नाचेंगे तो नहीं, लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: अरे वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कॉम्पिटिशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरनमेंट में पला पड़ा। यू नो बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग सिंगिंग एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी अभी मैं कैसे सिखाऊँ, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूँगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट्स सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मैं मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद हैं आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए, नहीं गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, बोनियम,
1: बोनियम का,
0: बोनियम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाया था, जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन,
0: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्तां है, अजीब दास मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो यू नो वो लफ्ज़ जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं क्या नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
1: गाने याद भी हो जाते थे,
0: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेंड नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन में।
2: हाँ जी।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ
0: लेकिन हमारे लिए
1: कुछ
0: तो...
1: भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई, तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेकर आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से फिर मैंने और बोला अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था।
0: फिर
1: इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई। तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गए ना आप, तो वो डर जो होता है ना
0: वो निकल जाता है।
1: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं, वो डर मेरा चला गया। तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों को, लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे, तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, लिए अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज़्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल होगी?
1: 17 साल की थी।
0: उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया।
0: वाह वाह वाह।
1: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उन पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उन्हें कि आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे, आप सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली। क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहाँ से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट में फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई, मैं, हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें, तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक, मतलब आइदर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूं, तो उन्होंने सब ने ना कर दी, मैंने बोला कि नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा, तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में वो बच्चे बड़े हो जाएंगे बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे, ऐसे क्यों दूसरे आएंगे, ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे, ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
0: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी
1: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
0: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
1: करेक्ट।
0: वो हर चीज से डरता है।
1: हाँ।
0: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए।
1: हाँ।
0: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो।
1: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है। हाँ। लेकिन हमारे, मेरे डैडी तो मजदूर हैं। उनको सिर्फ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ कि पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए, वो
0: ये बहुत बड़ी बात है ना।
1: हाँ।
0: और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने दो कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए।
1: खुश हो
0: तो खुशी मिल गई।
1: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के? तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
0: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
1: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी, मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर? तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
0: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
1: नहीं होता। तो वो अकल बाद में फिर जब जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूँगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखेंगे कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते थे मेरे दिमाग में। फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फेहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा यू नो, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार
0: आई
1: एम टेलिंग यू, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना, नहीं है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
1: नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊँ कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।
2: मैं जिंदगी

0: ये गीत तो हमने सुन लिया,
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मज़ा है और जो जिज्ञासा में मज़ा है, लाइफ को खोजने में मज़ा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी हैं।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूँगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली, फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, मैंने देखते क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मैं मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी ये इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया।
0: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज के तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे ज़माने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
0: हाँ।
1: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊँ, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बताने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊँगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो हैं वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के वगैरह ही। तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है। मैं
0: फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
1: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में यू नो सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, यू नो स्कूल कॉलेज फंक्शन सब यू नो दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज़ करने, क्योंकि ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्म जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
0: वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती है वो वाला डांस सेक्शन,
1: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
0: उस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको
1: तो रीना मेरी यू नो वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये यू नो प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो ये तो तुम करते हो तुम्हारे मतलब यू नो पार्टीज में से। नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुमको आना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर ना एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से भी मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में यू नो
0: का कहानी है।
1: कहानी है, तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए।
0: बताइए।
1: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
0: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूं, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
1: हाँ, लेकिन
0: स्कूल्स
1: स्टेज
0: में
1: हाँ,
0: और
1: फिल्मों के लिए
0: कॉलेजेस
1: नहीं।
0: में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है,
1: अलग
0: उसके
1: होती है
0: नुएंसेस अलग होते
1: एकदम
0: हैं,
1: अलग सर,
0: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं, वो
1: एब्सोल्युटली
0: तो आप जानते नहीं थे। फिर
1: एब्सोल्युटली नहीं
0: आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों
1: हाँ
0: चीजों को जोड़ के
1: साथ में
0: बताइएगा।
1: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म यू नो कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को यू नो रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है आप बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, आप डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स। सर मैं नहीं करना, मैं बोल रहा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे। वो हमारी जिम्मेदारी, और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है। आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है,
0: ओह
1: हाँ, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती की अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली। गाना ARMM का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं, कब यू नो नगाड़े को बोलूँ कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's of कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज़ द बुक फॉर टू गो फॉर, द 5 C's of कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए। ऐसे आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पर रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी 3रे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
0: एक तो और
1: बड़े
0: इतनी बड़ी
1: कलाकार को
0: बड़ी फिल्म थी
1: हाँ
0: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
1: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
0: लेकिन उसके बाद
1: हाँ,
0: जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी
1: हाँ,
0: और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा
1: हाँ,
0: तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
1: एक्चुअली मैं कहूँगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जुड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज़्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जुड़ा गया था।
0: जाहिर सी बात है ना।
1: लेकिन एक्चुअली बोलूँ वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नज़र में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था

इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। RBI ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में ये भजन अभी आप सुन रहे थे, जिसे हमने लिया था फिल्म तुम्हारे लिए से। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच। युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में। और आज का युवा मंच कार्यक्रम हम आपको बता दें कि फ़ोन आप कर सकते हैं इस कार्यक्रम में आज, और हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर वैसे तो सबको याद ही है, लेकिन हो सकता है कुछ नए युवा साथी हमारे साथ जुड़े हों, तो उनके लिए हम नंबर बता देते हैं 01892224391। ये हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, तो हम बातें करेंगे अपने युवा साथियों से। लेकिन जब तक कोई साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार
1: हेलो,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सुरक्षिता शर्मा,
0: कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं कांगड़ा जिले से,
0: अच्छा, क्या करती हैं?
1: मैं स्कूल पढ़ती हूँ, टेंथ।
0: कौन सी क्लास? 10th में पढ़ रही हैं? अच्छा, अभी हुई हैं 10th में? अभी एग्ज़ाम होने हैं ना आपके, कि हो चुके?
1: हाँ जी हाँ जी,
0: अच्छा, तो कैसे, कौन सा आपको सब्जेक्ट जो है वो आपका फेवरेट है, सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है?
1: पसंदीदा सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: ठीक। और आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम आप सुनती हैं?
1: हाँ जी, अच्छे
0: कैसे लगते हैं कार्यक्रम?
1: लगते हैं आकाशवाणी के कार्यक्रम।
0: अच्छा, और कुछ कहना चाहती हैं अपने बारे में, क्या बनना चाहती हैं आप, हॉबी क्या है, एम क्या है?
1: मेरी हॉबी है कि मैंने स्टडी बेस पे कुछ करना है।
0: अच्छा, जैसे कि
1: जैसे कि स्टडी बेस पे कुछ करना है या अपना बिजनेस कुछ।
0: अच्छा नहीं, हॉबी शौक क्या रखती हैं, और इसके अलावा, ठीक है पढ़ाई हो गई, और क्या, जैसे खाली टाइम में अगर मिलता है तो क्या मन करता है आपका, कि क्या करें या क्या करना पसंद आता है आपको?
1: जैसे खाली टाइम कुछ भी मिले, जैसे मुझे गाने सुनना और गाने गाना या
0: गाती?
1: शायरी सुनना या लिखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, तो शायरी लिखती हैं आप,
1: हाँ जी, मेरे
0: तो हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सुनाएंगी आप?
1: श्रोताओं के लिए भी
0: और भी युवा साथी हमारे ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे ना?
1: हाँ जी हाँ जी,
0: हाँ, तो अपना लिखा हुआ कुछ सुनाएंगी?
1: अपना लिखा हुआ कुछ, जैसे
0: लिखती हैं ना, आपने कहा आप शायरी लिखती हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: हाँ तो ज़रूर सुनाइए।
1: अभी शायरी जैसे कुछ भी सुना दो।
0: कुछ भी सुना दो, कुछ भी सुना दो, जो आपको अच्छा लगता है, जो मन करता है वो सुनाइए।
1: जैसे कि किस टाइप की शायरी।
0: आपको जो पसंद है, जैसी भी आती है, जो भी अच्छी लगती है, कुछ भी सुनाइए बस।
1: जैसे जो गुजर गया उसे याद मत कर, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत कर, जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की खुशी बर्बाद मत कर।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, गुनगुनाना भी चाहेंगी कुछ?
1: गुनगुनाना नहीं इस टाइम में।
0: चलिए ठीक है, शुक्रिया, आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़ना, ठीक है
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी?
1: आप इस टाइम कोई गाना चला सकते हैं, जैसे हम आपको कुछ बोलें।
0: गाना हम आज आपको सुना रहे हैं, आज क्या आपको बताएं, इस कार्यक्रम का नाम है मेरी पसंद, ठीक है? तो आज मैं अपनी पसंद के गीत आपको सुनाऊंगी, और हो सकता है मेरी पसंद आपकी भी पसंद हो,
1: हाँ जी हाँ
0: ठीक है?
1: जी, धन्यवाद।
0: शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।

0: हेलो
1: नर्मदा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है जी। देखिए, मैं फोन इसलिए किया हूँ क्योंकि ये शुक्रवार को आता था कार्यक्रम, आज
0: जी
1: शनिवार को कर दिया, ये
0: जी
1: तब्दीली कर दी।
0: जी हाँ, कुछ चेंजेस हुए हैं हमारे कार्यक्रमों में, तो ये हमारे जो यंग जीनियस हैं उनके लिए ये कार्यक्रम है।
1: हाँ ठीक है,
0: हेलो
1: कुछ युवाओं के लिए सुनाओ। मैं तो वैसे फोन
0: जी
1: किया
0: जी
1: हूँ, अगले श्रोता युवाओं को बात के लिए अगली कॉल आएगी तो उसमें।
0: जी जी शुक्रिया शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हाँ, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं दीपिका बोल रही हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ 9th क्लास
1: की। दीपिका।
2: हाँ
1: जी। जी दीपिका, आपकी आवाज़ बहुत मीठी लग रही है। कहाँ रहती हैं आप?
2: मैं कांगड़ा की हूँ।
1: अच्छा, और 9th क्लास में पढ़ती हैं।
2: हाँ जी।
1: अच्छा, और क्या क्या शौक हैं आपके, कुछ बताना चाहेंगी?
2: मेरे शौक वैसे तो डांसिंग है, कुकिंग है और वैसे मैं वॉलीबॉल प्लेयर भी हूँ।
1: अच्छा,
2: हाँ जी।
1: बहुत अच्छे। तो कहाँ तक खेली हैं, कब से खेल रही हैं? और
2: मेरे को अभी प्रैक्टिस में 2 साल हो गए हैं और अभी अंडर 19 का ट्रायल दूंगी।
1: देना है अभी?
2: हाँ जी।
1: हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि हमारी जो लड़कियां हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं और खेलने में, पढ़ाई के साथ साथ ये खेलने में भी उनका शौक़ है। और आप कह रही हैं कि आपको खाना बनाना भी अच्छा लगता है। अच्छा, फास्ट फूड। वैसे जो हमारा ट्रेडिशनल खाना होता है ना, वो भी अपने मम्मा के साथ धीरे धीरे उनकी हेल्प जब करते हैं ना, तो अपने आप आ जाता है ना, तो आना चाहिए। वो भी करती है, मम्मी की हेल्प करती है।
2: करती हूँ।
1: हाँ, तो अच्छा है, करना चाहिए फिर, क्योंकि तभी होता है ना कि जब कभी भी कहीं आप बाहर पढ़ने जा रही हैं या कहीं रह रही हैं, तो आपका जो भी मन करे खाने को तो आप खुद बना के खा सकती हैं।
2: वैसे मेरा छोटा भाई भी है, वो भी मतलब अंडर 14 खेल के आ चुका है क्रिकेट और हैंडबॉल में।
1: अच्छा,
2: हाँ जी।
1: ठीक, बहुत अच्छा। तो फैमिली में दोनों भाई बहन जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं,
2: हाँ जी।
1: है ना? चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, रेडियो आप सुनती हैं?
2: रोज अभी छुट्टियां पड़ी है ना, तो रोज ही सुनती हूँ।
1: अच्छा, छुट्टियां पड़ी हैं इसलिए रोज़ सुनती हैं। हाँ, वैसे तो पढ़ाई होती है ना। चलिए,
2: हाँ जी।
1: अच्छा लगा आपने फ़ोन किया, तो खूब मन लगा के पढ़ना और खेलना भी अच्छे से, है ना?
2: थैंक यू।
1: ठीक है, शुक्रिया फ़ोन किया आपने।

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: जी,
1: नमस्ते सिमरन।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? सिमरन।
1: यस, हाँ जी।
0: अच्छा, सिमरन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं बीएड कर रही हूँ।
0: ग्रेजुएट हैं? अच्छा,
1: हाँ
0: आवाज़
1: जी
0: से तो ऐसा लग रहा मुझे कि जैसे स्कूल में पढ़ती हूँ। ठीक, और बी एड कर रही हैं अभी।
1: हाँ जी,
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं सिमरन?
1: मैं जवाली जवाली कांगड़ा।
0: ज्वाली से बोल रही हैं। अच्छा
1: हाँ जी,
0: अच्छा
1: जवाली में भी गांव है समकेड़।
0: कौन सा?
1: समकेहड़।
0: समकेहड़। ठीक,
1: हाँ
0: अच्छा,
1: जी,
0: तो बी एड कहाँ से कर रही हैं आप?
1: इधर ही कर रही हूँ, चलवाड़ा में।
0: तलवाड़ा में। ठीक, तो मौसम कैसा है ज्वाली का?
1: गर्मी बहुत है।
0: गर्मी है ना? अब
1: हाँ जी,
0: बारिश हुई या नहीं?
1: बारिश नहीं हुई है, ऐसे तूफान आता है, हवा
0: अच्छा
1: चलती है।
0: अच्छा मुझे बताओ, कल रात को भूकंप आया था क्या?
1: ऐसे ना हमें महसूस नहीं हुआ ना, पर
0: अच्छा,
1: आया है। और उस टाइम शायद हम ना
0: हाँ।
1: मतलब अभी सोने की तैयारी कर रहे थे, और हमारा जो आंगन के सामने पेड़ लगे हैं उनमें से ना उसकी एक टहनी टूटी थी उस टाइम, पर
0: अच्छा
1: हमें इतना जज नहीं किया हमने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा नहीं महसूस कर पाए होंगे।
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी, महसूस नहीं किया। बाद में न्यूज़ देखी थी तो पता चला कि भूकंप आया है।
0: अच्छा हाँ,
1: हाँ,
0: हमारे
1: फिर अंदाजा
0: धर्मशाला।
1: लगाया मैंने कि वो डाल इसलिए टूटी थी।
0: अच्छा, और बताइए अपने बारे में।
1: बस, और ठीक है, गर्मी बढ़ी है बस।
0: हाँ, वो तो जैसे गर्मी का मौसम है तो होनी भी चाहिए गर्मी, है ना?
1: हाँ जी, हाँ, होनी
0: और
1: चाहिए।
0: बहुत सारी सुविधाएं हैं। अच्छा,
1: हाँ
0: अपने
1: जी,
0: आप बताइए, आपके और शौक क्या हैं इसके अलावा?
1: शौक ज्यादा खास नहीं है बस ये है कि नई नई चीजें करने में अच्छा लगता है,
0: हाँ, अच्छा है,
1: नई
0: और
1: चीजें सीखने
0: रखने
1: में।
0: चाहिए, शौक भी रखने चाहिए।
1: हाँ
0: कुछ
1: जी,
0: ना कुछ शौक होना चाहिए ना। कईयों को समाज सेवा का शौक होता है, कुछ मतलब अलग अलग तरह के, कोई पेंटिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है। तो लड़कियों के लिए भी जैसे आपको छुट्टियां हो तो उस टाइम में कुछ हॉबी क्लासेस लगती हैं ना, कोई मेहंदी लगाना, कोई जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, कुछ कुछ सीखते रहते हैं। छुट्टियां जब होती हैं तो ये चीज़ें जैसे आप सीखते रहें, कहीं ना कहीं से सीखें, है ना? जगह
1: हाँ
0: जगह
1: जी, हाँ जी,
0: आजकल कोचिंग सेंटर होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, तो सीखना चाहिए
1: हाँ जी।
0: सिलाई।
1: वैसे तो अभी टाइम नहीं लगता है, बीएड
0: हाँ,
1: में
0: अभी
1: काम ही
0: बीएड
1: बड़ा
0: में भी
1: होता है।
0: काम बहुत होता है। ठीक,
1: हाँ
0: सही कह
1: जी,
0: रही हैं आप।
1: हाँ,
0: तो
1: वैसे तो गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है। मेरी सिस्टर भी है बड़ी,
0: हाँ,
1: उनको भी सिंगिंग का बहुत, उनको गाने का भी थोड़ा शौक है, और ऐसे सुनने का भी।
0: तो आप नहीं गाती हैं क्या?
1: मुझे ऐसे लगता है, पर वो ही ना अपने आप में लगता है, बाकी मुझे ऐसे लगता है कि आवाज अच्छी नहीं है।
0: अच्छा, तो चलो आज हो जाए ये चीज़ की आवाज़ अच्छी है या नहीं। ठीक है,
1: नहीं
0: हाँ, तो आज आप हमें
1: नहीं मैम,
0: गाना सुना दो थोड़ा सा गुनगुना के, है ना? हमें पता चल
1: नहीं,
0: जाएगा, क्योंकि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी अगले कार्यक्रम तक तो हमें बता ही देंगे कि आपने, सिमरन ने कैसा गाया। वो गा सकती हैं या नहीं? स्कूल में या कॉलेज में तो गाती होंगी आप?
1: बड़ा कम गया ऐसे, मतलब अपने आप में, वैसे बाहर नहीं।
0: चलिए,
1: हाँ
0: आज
1: जी,
0: हम भी आपके अपने हैं, तो आज हमारे साथ हमें सुना दीजिए कुछ।
1: मैम सुना देती, पर मुझे इस वक्त गाना याद नहीं आ रहा कोई। पता
0: अच्छा, चलिए कोई बात
1: क्या,
0: नहीं।
1: जैसे कोई गाना तो गाना, पर मुझे ये याद नहीं रहता कौन सा गाना, भूल ही जाता है।
0: ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार जब आपसे बात होगी तो तैयार रखना, गाना सोच के रखना,
1: हाँ
0: है
1: जी,
0: ना?
1: मैं ना फोन करती हूँ, एक टाइम नहीं लगता है मुझे, याद भूल जाता है मुझे। मैं वैसे बाकी सुनती हूँ, पर इस
0: हाँ,
1: कार्यक्रम में तो, और मेरा फोन लगता ही नहीं, आज पता नहीं कैसे लग गया। और
0: अच्छा,
1: मैं तैयार भी नहीं थी, मैंने सोचा पता नहीं लगना भी है कि
0: लगना
1: नहीं,
0: है या नहीं लगना, इसलिए, है
1: ये तो
0: ना?
1: लग गया एकदम
0: हाँ,
1: से। हाँ
0: लग गया। चलो, बहुत अच्छी बात है, और पहली बार शायद आपकी कॉल लगी है,
1: जी, पहली
0: तो
1: बार लगी है।
0: हाँ, तो इसलिए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अच्छा लगता है जब नए नए श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमें भी पता
1: हाँ
0: चलता है
1: जी,
0: ना कहाँ कहाँ पर कौन कौन सुन रहे हैं कार्यक्रम, है ना?
1: हाँ जी,
0: चलिए, बहुत अच्छा
1: एक,
0: लगा।
1: हाँ जी,
0: हाँ,
1: एक प्रोग्राम है जो क्या है, घर परिवार, वो मैं जो छुट्टी हो तो मैं करती हूँ, उसमें लग जाती है कॉल।
0: अच्छा, हाँ, दिन में क्योंकि ज़्यादा करके बिजी होते हैं सब लोग, है ना, तो आप टाइम निकाल लेती हैं, अच्छी बात है। हाँ वो है अभी एक्चुअली, वो क्या है कि वो महिलाओं के लिए कार्यक्रम है वो ना।
1: हाँ जी, तभी लग जाता है
0: हाँ
1: वो।
0: तभी लग जाता है, ठीक। और खाली महिला बहनें जो घर पे होती हैं वही फोन करती हैं इस कार्यक्रम में
1: हाँ
0: तो।
1: जी। अच्छा मैम, एक एक रिक्वेस्ट है
0: हाँ
1: आपसे।
0: बोलो।
1: मेरी दीदी की लड़की है छोटी सी, वो थोड़ी बात करना चाहती है आपसे। हाँ
0: अच्छा जी, करवाइए।
1: जी, हेलो बोलो। भाग गई
0: अच्छा
1: आई मेरे पास और भाग गई।
0: अच्छा चलिए सिमरन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।
1: हाँ
0: आकाशवाणी
1: जी मैम,
0: धर्मशाला के कार्यक्रम सुनते रहिए और साथ में पढ़ाई भी अच्छे से करना, ठीक
1: हाँ
0: है
1: जी मैम, अगली बार करूंगी कॉल अगर लग जाएगा तो।
0: जी। ज़रूर, शुक्रिया बहुत बहुत फ़ोन करने के लिए।
1: हाँ जी, थैंक यू मैम।
2: Make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology, and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display, and safety through six airbags, the Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry! Offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
5: तो युवा साथियों, इसके साथ ही आज का हमारा युवा मंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नर्मदा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रही थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरेले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, किसान व बागवान भाई बहनों के लिए आप कार्यक्रम सुनेंगे किसान वाणी शाम 6:05 पर और 6:35 पर मौजा ग्राइंदिया कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सबरस कार्यक्रम का समय रहता है रात्रि 8:00। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी के शिमला केंद्र से ही कार्यक्रम हिमदर्शन रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, शाम 7:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम युवा शक्ति आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:30 पर कार्यक्रम साहित्य भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम के 6:00 को हैं आपसे कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो भारत को विश्व के सबसे युवा देशों में से एक बनाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार राष्ट्र निर्माण और भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लक्ष्य की दिशा में युवाओं की ऊर्जा और क्षमता को सही दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शिमला के बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसमें सभी 25 वार्डों के सदस्य शामिल रहे। इधर सोलन में आयोजित समारोह में उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने जिला परिषद सदस्यों को, जबकि उपमंडल अधिकारी डॉक्टर पूनम बंसल ने पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाई। उधर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में सभी 17 वार्डों के नव निर्वाचित सदस्यों को उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सदस्यों से विस्तृत चर्चा के बाद जल्द अगली बैठक निर्धारित की जाएगी, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।
2: सिरमौर में जिला परिषद के टोटल 17 सदस्य हैं। आज हमने यहाँ पे सदस्य जो जिला परिषद के चयनित होकर आए हैं उनकी शपथ समारोह रखा था, और आज सभी 17 जिला परिषद के सदस्य यहाँ आए, सभी ने अपना शपथ ग्रहण किया, और आज उन्होंने ऑफिशियल तौर पे जिला परिषद को एज माननीय सदस्य उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जो हमारा एक्ट कहता है उसमें के है कि हम इसमें सफिशियंट टाइम दें इलेक्टेड मेंबर्स को, तो जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी वो जल्द से जल्द हम करेंगे और नोटिस जारी करके सभी सदस्य माननीय सदस्य को ये हम अवगत करवा देंगे किस दिन उनको आना है, और ये नेक्स्ट मीटिंग में जल्द करेंगे। उस मीटिंग में हमारे जो जिला परिषद के चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन है उसका चुनाव हो।
0: धर्मशाला विकास खंड की पंचायत समिति के नव निर्वाचित सदस्यों को एसडीएम मोहित रतन ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस बीच कुल्लू जिला परिषद के नव निर्वाचित सदस्यों को उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने एक समारोह में शपथ दिलाई। इस दौरान सभी सदस्यों ने कुल्लू जिला के विकास को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई। अखिल भारतीय कलाकार संघ के अध्यक्ष व प्रसिद्ध अभिनेता रोहिताश गौड़ और संघ की उपाध्यक्ष रेखा गौड़ ने आज लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर रोहिताश गौड़ ने राज्यपाल को अखिल भारतीय कलाकार संघ की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि 71वीं वार्षिक अखिल भारतीय नाटक व नृत्य प्रतियोगिता आज से शिमला में शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि 10 जून तक चलने वाले इस सांस्कृतिक आयोजन में देश भर से हजारों कलाकार भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान कुल 27 नाट्य दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

0: के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्तर विकास राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आज पंचायत के प्रधान प्रशांत के लाहौल पहुंचने पर अटल टनल के उत्तरी द्वार पर ग्रामीणों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें पारंपरिक कथा पहनाकर सम्मानित किया गया। पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की खुशी में ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर थिर रखते हुए जश्न मनाया। इसके बाद शांशा गांव पहुंचने पर सभी ग्रामीणों ने पुनः लाहौली परंपरा के अनुसार स्वागत किया। शांशा पंचायत की इस सफलता ने लाहौल स्पीति और हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस प्यार दे लोक गीत के बाद फिर तो वक्त है जानकारी का, कहने जानकारी लेके आए हाँ एक उन्नत किसान कहने की गलबात, तो और सुन दे ए गलबात
1: जी।
2: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता की कड़ी च अज मिंजो कन्ने एक उन्नत किसान जुड़ा करते हैं करते हैं इन्हों कन्ने गलबात। राम राम जी।
3: राम राम जी। राम राम
2: जी। अपना नाम दसा।
3: मेरा नाम दीप कुमार है।
2: हाँ जी।
3: कने घर छल में।
2: अच्छा।
3: कने ब्लॉक मेरा रात।
2: अच्छा, तो दीप कुमार जी खेती बाड़ी करते हैं ना।
3: हाँ जी कर दे।
2: कितनी की जमीन है तो हवाल खेती करने वाली।
3: खेती करने हो जी हाँ जो लै 8-10 कनाली होनी है।
2: अच्छा जी। सारी वाही होंगी।
3: हाँ जी सारी वाही होंगी।
2: क्या क्या बनते? अच्छा
3: बीच जी सब्जी भी लाते।
2: हाँ हाँ जी।
3: कुछ च अपने खाने जोगा गेहूं।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। तो जियाँ जिक्र करते जियाँ अहाँ दी पिछे जड़ी फसल निकली कणका दी।
3: हाँ जी।
2: कदे की फसल रही?
3: कणका ही फसल जी वधिया ही।
2: हाँ जी।
3: कने पहले तो थोड़ी ज्यादा पैदावार हुई बे।
2: अच्छा। तो दीप जी जड़े तुहां दे ये बीज वगैरह होंगे ना ये कौन बीज बांधे तुहां अपने या फिर कोई उत्थे लांदे कुथी?
3: एक बारी लांदे जी कने 2 साल बीज लांदे।
2: अच्छा अच्छा।
3: हाँ जी
2: हाँ जियाँ ऐसा मनते भी हैं ना कहीं दूं 3 साल बाद जो बीज बदलना चाहिए ना।
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
2: अच्छा अच्छा जियाँ गल करते हैं जी खाद की, तो खाद कौन दी पांदे तुहां खेतरां च?
3: खाद जी जड़ा घरे दी हुंदी गोहा वगैरह चाही पांदे जी।
2: अच्छा अच्छा। दीप जी जियां जड़ा तुहां दा इलाका ने रशियाळू।
3: हाँ जी।
2: इस इलाके च पानी दा क्या साधन है, कियां खेती करदे तुहां सिंचाई?
3: पानी जी बरखा दा ही हुंदा, सुना बरखा ही होवे तां ही खेती ज्यादा हुंदी।
2: अच्छा अच्छा। कुल वगैरह नहीं लगदी है?
3: कुल नहीं लगदी।
2: बिजाई वगैरह कियां करदे? ट्रैक्टर वगैरह रखे अपना?
3: हां जी ट्रैक्टर रखे जी।
2: पावर टिलर रखे?
3: पावर टिलर जी।
2: अच्छा, तो जल पावर टिलर लिया हा अनुदान वगैरह मिले कुछ विभाग द्वारा?
3: हाँ जी हाँ जी।
2: अच्छा
3: हाँ जी मिले जी।
2: कितना अनुदान मिलया?
3: ये मिले जी 25,000 रुपया।
2: अच्छा अच्छा। जी तुहां दस्या कि बरखा भरी तुहां दा जड़ा इलाका है निर्भर है, तो तुहां कोई जियां पानी वगैरह दे खड्डे खुड्डे नहीं बनाए जियां टैंक वगैरह?
3: टैंक वगैरह बनाए जी।
2: अच्छा।
3: कने बरसाती दा पानी टैंका थोड़ा बहुत किट्ठा कर लैंदे कने सिंचाई कर लैंदे।
2: अच्छा। दीप जी जियां तुहां दस्या ना कि तुहां ज्यादातर जिहड़े से देसी खादां भरी जिहड़े से खेती तैयार करदे आ ना, जियां कई कई बारी क्या होंदा फसल च कोई जियां कोई रोग लगी जांदा कोई बीमारी भी आई जांदी, तां क्या करदे तुहां?
3: ए जी हां जिहड़ा तुहाड़ी देसी जिहड़ा जड़ी बूटी जिहड़ा हुंदी देसी दवाई।
2: हां जी
3: हां जी। ओही छिड़काव करदे जिहड़ा हां जो प्रकृति ते मिलदियां।
2: अच्छा अच्छा अच्छा। प्राकृतिक खेती है ना?
3: हां जी हां जी।
2: प्राकृतिक खेती करदे तुहां?
3: हां जी हां जी।
2: क्या क्या घटक बनाते तो प्राकृतिक खेती?
3: जीवामृत गंजीवामृत।
2: हाँ जी।
3: अग्निअस्त्र ब्रह्मअस्त्र।
2: अच्छा
3: हाँ जी।
2: जी कोई बीमारी आई जा था ये अग्निअस्त्र के ब्रह्मअस्त्र है ना, तो कितने साल हुए तो हाँ जो प्राकृतिक खेती करना जुड़े हो?
3: ये जी 2014 च जुड़े ही।
2: अच्छा। ट्रेनिंग हुई ही कुछ?
3: हाँ जी हाँ जी पालमपुर हुई ही।
2: अच्छा किन्ने दिन की ट्रेनिंग ही ये?
3: ये जी हफ्ते रही ही।
2: अच्छा, तो उतो क्या सीखा तो हाँ फिर प्राकृतिक खेती का?
3: उतुआ ये सीख्या भी छोर थोड़े पानी ने ज्यादा खेती कर सकते।
2: हाँ घर आपू घर है जेडे से अहां सारियां दवाइयां
3: बनाई सकते
2: कने खादा बनाई सकते है ना, तो जियां जीवामृत जियां बनाना हो या कोई और घटक बनाना हो तो इस ताईं दिखा भाई देसी गाय की जरूरत पौंदी है ना, तो हां पाली घर देसी गाय?
3: हां जी दो। हां जी।
2: अच्छा। सोगी दुध भी दिंदियां होनियां?
3: हां जी दुध भी दिंदियां।
2: अच्छा, तो जियां अहां दे सुनने वाले तुहां ये दसा कि अगर तिना जीवामृत अगर तिना बनाना हो तो क्या क्या पौना इस
3: च? पौना जी गुंतर।
2: हाँ।
3: गोबर।
2: हाँ जी।
3: कने गुड़।
2: हाँ जी।
3: कने बेसन।
2: हाँ जी।
3: कने मिट्टी।
2: हाँ जी।
3: सभी तो जो जेड़ा बीड़ हुंदी ना जी। हाँ। कटी जी तिदी मिट्टी चाहिदी।
2: हाँ जित्थू कदी कोई हाँ जियां छिड़काव वगैरह जेड़ा सन्नी कीते होवे ना।
3: हाँ जी हाँ जी।
2: असी जिन जिसी हां बोल सकदे कि संजीव मिट्टी।
3: संजीव मिट्टी
2: है ना, तो फिर घोल कितने दिन तैयार हो जाता है?
3: ये जी हो जाता गर्मी तो 3 दिन हो जाता।
2: हाँ।
3: सर्दियों हफ्ता भी लगता 5-6 दिन लग
2: जाए। अच्छा, तो जी अहाँ सारा बाल्टी जी मिलाईता तो फिर क्या इसी तैयार की अपने आप ही होता रहा है?
3: हाँ जी जियाँ मिलाईता घोलीता जी।
2: हाँ।
3: कने सिंज भ्याग लाई के जरा सूई जी सूई घूमती जी घड़ी की।
2: अच्छा।
3: इं सिंज भ्याग 2-3 मिनट घुमाना जी।
2: अच्छा सीधा यानी कि
3: सीधा
2: सीधा घड़ी दिशा च
3: है? घड़ी दिशा।
2: अच्छा, तो दीप जी जियां इस बाद तुहां दस्या है ना जियां कि दरेक अस्त्र का नीम अस्त्र भी तुहां दस्या है, इस सोगी जी हाँ सुने कि जियाँ कई बार जी कीट पतंगे या बीमारियां लगी जा तो ये चीज़ें बनाई तो हाँ
3: जी हाँ जी बनाते कने पाते जी।
2: अच्छा तो तुहां जो ये रिजल्ट कदे लगे फिर प्राकृतिक खेती दे
3: इधर रिजल्ट ठीक हैं जी।
2: हाँ जी
3: जियाँ देसी बनाता शायद वधिया क्योंकि इस देसी जरा बनानी है कने जियाँ जरा सब्जी है कुछ भी चीज़ है
2: हाँ जी
3: जिन्ना आपू तैयार होना बिच
2: हाँ
3: कने जरा थोड़े अपने पाइते
2: हाँ जी
3: तो इस आपू जरा पौधे ताकत आ जाती कने जरा फल हों इस भी ताकत होंगी।
2: अच्छा तो जियाँ जरा अनाज जितना भी उगाते हैं सोगी जी प्राकृतिक खेती करते हैं तो दिखा जियाँ प्राकृतिक खेती करने तीन थोड़ी जी इस जियाँ लागत जियाँ अह की घट होंगी है लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा होंगी तो जलू अह ये उत्पादन मान लिया कि अह कु बेचना बाजार में या कुछ भी तो जो सीओदे भाव मिल पाते क्या
3: दिखा जी हूँ चल बाजार जाना है सब्जी लेके आए
2: हाँ
3: तो शायद भाव नहीं मिलते हाँ जी
2: हाँ
3: पर ये हाँ जी संतुष्टि होंगी भाई हाँ खरा खा दे कने खरा शुद्ध होरना भी खुवा दे
2: बिल्कुल दिखा ये दिखा बड़ी अच्छी गल तो हाँ जी गलाई है कि आपू जिन जिन्हें यहाँ अपना जरा जो उत्पाद है समान बेचना है तेना बेचारे क्या पता कि किए तैयार की है ना।
3: हाँ जी हाँ जी
2: कई बार क्या होंगे कि इन्हें कहना ठगी भी हो जाती कि इं बोलते कि ये देसी चीज़ें देसी सब्जी है कहना होवे भवें सह अंग्रेजी कहना उससे पता नहीं कितना कितना जहर जहर जरा सह पाया होना है ना।
3: हाँ जी हाँ जी
2: तो हाँ एक बढ़िया अच्छी जी सोच ले कि जरा चल रहे हो ना कि आपू भी जरा शुद्ध खा कने बिना कुछ लोभ लालच दे कि चलो अगर भाव ज्यादा नहीं मिलना करता तो चल कुछ जरा सा एक अच्छा तो हाँ बेचा दे ना। अच्छा
3: जी अच्छा खवान
2: हाँ
3: अपना भी स्वास्थ्य अच्छा रहना कने दूसरे का भी अच्छा रहना।
2: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी तो तुहां जो कौन बाजार लगता नेड़ा कि घरे दे विकी जांदा समान
3: घरे बेची लैंदे कने बाजार भी जांदे जी गग्गल बाजार सोगी नेड़ा।
2: अच्छा कहना देखा बाजार में तो ऐसा होंगे ही है कि हमेशा गाहक दिखता कि जियाँ देसी चीज़ जिसी कुदू मिलना है ना
3: हाँ जी हाँ जी
2: भले ही सह अगर तिना जो विश्वास हो गया ना कि ये वाकई जरा सह देसी तो सह दो पैसे ज्यादा खर्च करने भी जरा सह डरते नहीं ना ना
3: तैयार रहते जी गाहक जियाँ तो हाँ कुछ सड़क कंजारे टोकरी लेके बह जाएंगे
2: हाँ
3: देसी देसी सब्जी है
2: हाँ
3: तो सह तो थोड़ी सब्जी तौली बिक जानी।
2: हाँ कहना कई बार तो दिखा ऐसा भी होंगे कि गाहक जियाँ दो चौ जगह देना पता कर लिया ना जियाँ अगर हाँ भिंडी बेचनी है तो अगर कुन की बोली था कि अहाँ वाल भिंडी मन लिया 50 रुपये किलो है कहना तिना परले बाद अगर कुनी हक पाई थी कि भरा जड़ी सह 30 रुपये किलो है तो गाहक के भरा चली जाना तिना ये नहीं दिखना कि इससे फर्क क्या वजह क्या है ना।
3: क्वालिटी ज्यादा फर्क नहीं दिखाना देना
2: हाँ
3: सस्ती दिखनी
2: सस्ती दिखनी चाहे कहना उल्टा भी सह बीमारी
3: घर।
2: हाँ दीप जी जियाँ तुहां दस्या कि तुहां प्राकृतिक खेती की तुहां सिखलाई जी लई है शुरू शुरू जल तुहां ये शुरू किया हा काम प्राकृतिक खेती का तो तुहां जो ऐसा लगे कि उत्पादन कुछ घट होया कि बराबर ही होया
3: जी हुण जल शुरू शुरू किया तो थोड़ा घट घट होंदा गया
2: हाँ
3: इं दू खालना त्री बाद फिर ओला बढ़ता गया।
2: हाँ अच्छा जियाँ तुहां ये प्राकृतिक खेती की सोगी कोई और भी ट्रेनिंग भी लई कुछ ऐसी जियाँ कई और भी ट्रेनिंग चलदियाँ।
3: हाँ जी हाँ जी बड़िया हाँ जरा आयुर्वेदिक वाले जरा जसूर छाछ ट्रेनिंग हुई ही
2: जसूर छाछ।
3: हाँ जी
2: अच्छा औषधीय पौधे
3: औषधीय पौधे की
2: हाँ जी
3: सभी लई जी।
2: हाँ जी
3: टीचर हाँ जो जानकारी है भाई कौन चीज़ा हाँ जी वास्ती खड़िया।
2: हाँ जी तो दिखा जलू अह सीखी के आते हैं ना तो अहाँ दिखा अपने ग्राएं आई कि एक नया करने की जी कोशिश करते हैं ना कि अहाँ कुछ सीखी के आए हैं अहाँ के अखे बखियाने भी जरा सीखने जरा मिलता है ना।
3: हाँ जी
2: दीप जी जियाँ इस सोगी और तुम अपनी जमीन में कोई जियाँ फलदार पौधे वगैरह भी लगाए कुछ।
3: हाँ जी हाँ जी दो तीन सेबा के पौधे जी।
2: हाँ जी
3: दो तीन तो चमरख लाए।
2: अच्छा
3: हाँ जी
2: अच्छा थोड़े लगाए
3: थोड़े थोड़े लाए जी।
2: अच्छा
3: हाँ जी गांस हूँ सोचा पे गां थोड़े थोड़े बधाइए।
2: अच्छा तो जियाँ दो गाय रखी हैं जियाँ गाय बहाँ हूँ जी गल करते हैं जियाँ पहले शुरू च भी हाँ गल की ही दुध भी दिनी होनी है देसी गाय ने।
3: हाँ जी दुध भी दिनी है पर थोड़ा दिनी है जी।
2: अच्छा दोनों दिनी है।
3: हाँ जी दो ही
2: किन्ना किन्ना दूध देनी
3: है ये देनी है दो तीन किलो जी।
2: अच्छा चलो देखा अपने घर का जरा सा दो तीन किलो दुध भी जरा सा बड़ा भारी है ना।
3: हाँ जी
2: कहना देखा देसी गाय के दुध की तो जी मांग बड़ी भारी है
3: बड़ी भारी है
2: घ्यो वगैरह भी जोड़ते होने चाह छोड़ते होने।
3: हाँ जी घ्यो भी जोड़ लेंगे चाह भी छोड़ लेंगे।
2: अच्छा
3: हाँ जी दही भी जोड़ लेंगे।
2: तो जी देसी गाय का घ्यो लैना हो तो क्या अजकल क्या भाव मिली जाता
3: देसी गाय का घ्यो जी 1200 रुपया किलो है।
2: अच्छा हाँ देखा भी एक ना ही जुड़िया कि देसी है ना।
3: हाँ जी हाँ जी
2: कन्नै दिक्खा गाय दे घ्यो जे बड़े भारी जड़े से आयुर्वेदिक जड़े से गुण है ना
3: इं
2: मालस करने वास्ते या कुछ होर है ना। अच्छा दीप जी, अहाँ की जी बेरोजगार युवा पीढ़ी है ना, उस युवा पीढ़ी जो तुहां क्या सुनेहा देना चाहेंगे तुहां?
3: हाँ तो ही बोलते जी, काम करने होता बड़ा कुछ है।

0: हाँ जी
1: काम करा छोटे पैमाने पर करा तो हाँ
0: हाँ
1: हल्का हल्का है।
0: हाँ जी
1: ठीक है जी। तो हाँ अपनी खेती बाड़ी है तो भी अपने जरा रोजगार जरा अपने परिवार या खर्चा निकाल सकते
0: बिल्कुल हाँ जी
1: थोड़े जहा। तो हाँ अपने जरा ब्लॉक नेड़ा ना
0: हाँ जी
1: तिना ते थोड़ा बहुत अपनी जरा सिखलाई जरा तिना दी योजनाएं होंगे तिने जाई के तिने पूछी के ट्रेनिंग ले के तो हाँ अपना जरा थोड़ी बहुत ही खेती है थोड़ी बड़ी जमीन च भी अपनी खेत कारोबार जरा कर सकते हैं।
0: जी हाँ जी कुल मिलाए कि ये बोल सकते कि जड़ा सा एक अच्छी सिखलाई ले करी ता तो घूमने की बजाय है ना
1: हाँ जी हाँ
0: कने
1: जी
0: वैज्ञानिकों की सलाह कने वैज्ञानिक तकनीक अपनाई कि जड़ा सा अपना रोजगार जड़ा सा चलाई
1: चलाई
0: सकते।
1: सकते
0: दीप जी तो हाँ अपने खेतीबाड़ी के अनुभव अहाँ कने साझा किए अपना कीमती समय तो हाँ अहाँ जो दिता तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों अहाँ सुनी ये जानकारी कहने
0: जी
2: जानकारी ते बात फिरी ते वक्त है एक लोकगीत का तो अहाँ सुन देख प्यारा दिया लोकगीत।
0: जी

0: किसान साथियों इसी कन्नै कार्यक्रम किसान वाणी दा समय इत्थे संपन्न हुंदा है। जाने ते पहले दसी दईए तकनीकी सहयोग रहा सुनील कुमार दा, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह। हुण सांझो दोनों जदे आ अनुमति।
1: अच्छा जी, जय हिंद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो।
1: नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार।
0: हाँ जी, नमस्कार जी। कार्यक्रम च तुहाड़ा स्वागत है। अपना नाम दसा जी, कने कुथु ते बोला दे।
1: मैं बोला था जी, पंजाब तो हाँ,
0: हाँ जी
1: जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरियां दे ग्रां
0: जी
1: मेहतापुर तो हाँ, महिंदर सिंह राणा।
0: जी जी जी कार्यक्रम च तुहाड़ा स्वागत है जी। तुहां कौन जे लोक गायक दा, लोक गीत
1: आज कौन
0: जेड़ा।
1: कौन दे लोग कलाकार रखे दे?
2: जी मान सिंह, अजय सिंह, अंजनी व्यास, अंकुर संदल, प्रदीप परदेसी, शेर सिंह, कने विक्रांत।
1: चला फिर मान सिंह का सुनाई दिया वो है जेड़ा
2: जी
1: क्या
2: अहाँ
1: बोल।
2: अहाँ सिर्फ गायक दा जो सुनाई सकते, पर कोई एक गाना जेड़ा तुहां बोल के सहानी तो जो सुनाई सकते, क्योंकि अहाँ सिर्फ गायक रखे होंगे
1: चलो
2: ना।
1: कोई नहीं
2: हाँ
1: कोई
2: जी
1: नहीं,
2: हाँ
1: तो हाँ अपनी मर्जी से सुनाई दिन्ने
2: जी
1: हैं
2: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
2: जी।
1: तो तुहाड़ा कार्यक्रम च फोन करने ताई बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद, शुक्रिया।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, कार्यक्रम थोड़ा
6: सा। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन हर।
5: हेलो
7: जी, मुझे लग रहा है किसान साथी या जो भी श्रोता थे इन्हों का फोन जरा सा कटू है गया
5: जी।
7: तो श्रोतियों ने मैं एक गुजारिश और करना चाहता कि जल उस सू फोन कर देना तो अपने रेडियो सैट की आवाज़ घट कर ही देन या अपने रेडियो सैट से दूर जाए कि सू फोन करन ताकि आने कन्ने जी गलबात हो सके। हैलो
5: हैलो
7: हैलो
5: हैलो, हाँ जी थोड़ा जोर ने बोला। हाँ जी नमस्कार जी, कार्यक्रम थोड़ा स्वागत है।
8: हेलो
5: हाँ जी, हाँ जी बोला, थोड़ी आवाज ओ दी।
8: मैं कश्मीर सिंह राणा बोल रहा हूँ जी।
5: जी
8: हाँ, राम राम जी।
5: राम राम जी, राम राम।
8: सुनाई दिया किसी भी कलाकार की हो, माता की हो, बाबे की हो, भोले शंकर की हो।
5: ठीक है जी, ठीक है। तो जड़ा ऐसा है इस दे कार्यक्रम सुनते साढ़े आकाशवाणी धर्मशाला दे।
8: बिल्कुल जी, जो 85-86 दे से जुड़े
5: हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, बड़ी छेड़ गल है। कदे लगते जी साढ़े कार्यक्रम? बिल्कुल जी, कार्यक्रम च फोन किया, बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो सुना माता दी भेंट जी।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just Rs. 3999 per month. Also, get amazing benefits up to Rs. 50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: हेलो
3: हेलो
2: नमस्कार जी नमस्कार कौन बोला दे कुछ ते बोला दे
4: मैं जी अरदेव डार ते बोला केड़ी ओसिले रखे दे
3: बिल्कुल जी कार्यक्रम च तुहाड़ा स्वागत है कने तुहां जड़े अनसे साडे कार्यक्रम नित सुन दे कि आज ही लगा फोन
4: नहीं जनाब मैं मतियां सालां दी सुन दा है पर मतलब नंबर ही नहीं लगदा जी
2: जी आज तो हां नंबर लगी है मतलब जी
4: आज ही नंबर लगा जनाब है विचित्र सिंह ने दिता हां
2: अच्छा अच्छा जी जी जी जी
3: जी जी बड़ी छेड़ गल है दिखा साडे श्रोतियां दा फोन हुंदा तां हां जो तां भी पता लगदा कि साडे कितने श्रोता हैं कने कितने अच्छे ने दिल लगाई के से आकाशवाणी धर्मशाला दे कार्यक्रमा दा लुत्फ जेड़ा से लेंदे हैं
2: जी
4: जी महाराज
2: जी हुण तुहां मुझे दसा कुछ लोक गायक तो तुहां जेड़ा लोक गीत सुना है मेरे नाल हुण जेड़े बचे हुण गायक सन अजय सिंह अंजनी व्यास अंकुश संदल प्रदीप परदेसी कन्ने शेर सिंह कन्ने विक्रांत
4: शेर सिंह दा सुनाई दिया महाराज जी
3: जी कार्यक्रम च तुहाड़ा फोन करने ताई बड़ा बड़ा धन्यवाद कन्ने दोबारा भी तुहां जेड़ा से प्रयास करदे रहना जी खेतीबाड़ी भी करदे जी
4: नहीं महाराज जी खेतीबाड़ी नहीं कर दे
3: जी ठीक है तुहाड़ी पसंद पर सुनांदे तुहाड़े लोक गीत
4: ठीक है जी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो
2: हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार जी, कार्यक्रम च तुहाडा स्वागत है। कौन बोला दे जी?
3: मैडम जी नमस्ते, मेरा नाम श्रेया है।
1: श्रेया,
2: श्रेया
1: श्रेया श्रेया जी, क्या करते हो आप?
3: मैं पढ़ाई
2: कौन सी क्लास में हो?
3: 12th।
2: वेरी गुड, तब तो बड़ी अच्छी बात है जी, आप भी हमारे साथ में पढ़ाई के साथ साथ कार्यक्रम सुनते हो। हाँ जी श्रेया जी, तो हाड़े वाल जड़े हैं सह लोग गीत सुनने हैं, तो हाँ तो लोग गायकों के यहाँ ना दसते हैं, कहने तो हाँ दसा भी तो हाँ कौन जहा सुनना चाहेंगे?
1: अजय सिंह, अंजनी व्यास, अंकु संदल, प्रदीप परदेसी, कने विक्रांत।
3: विक्रांत दा सुनाई दो
2: जी। श्रेया जी अपनी पढ़ाई बखे भी खूब ध्यान देना, कने कने कार्यक्रम भी सुनते रहना। थोड़ा कार्यक्रम च फोन करने ताई बड़ा बड़ा धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौज जागरणिया, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 2 शतकीय पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानी पूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में

0: FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम युवा शक्ति रिले किया जाएगा।
1: टू वुमेन लेड डेवलपमेंट पार्टिसिपेंट्स आर प्रोफेसर सुषमा यादव एंड अदिति टंडन सीनियर जर्नलिस्ट, मॉडरेटर इज सोनू सूद। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक। इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. हम आपसे जो आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार के इस कार्यकाल में, उसके ऊपर हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
3: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है जी। उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है। मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
2: जी,
3: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया, देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
2: जी।
3: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लकी से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही है उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं, और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे, लगभग वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही, और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं, हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, तो वो काम भी हुआ है जी, जी। और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है, और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है, शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था, महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं, तो शी मार्ट्स का

0: Sarojini Naidu. So there are n number of examples of women enterprise in our country through different sectors and through different segments. What had happened is suddenly after independence, there was lack of policy intent to see women as drivers of change. So, you know, you were not looking at women as a segment that can drive the economy of the country. Now that entire policy focus has shifted. And like you said, that women have been brought into the financial mainstream of the country. And the first big step that helped lay down the landscape for that was the Jan Dhan accounts. Now, this sounds very simple. It sounds very mundane, but it's a very, very big, very consequential reform. Under the Jan Dhan accounts, the bank accounts that were opened, zero balance accounts, majority of the accounts are owned by women. I think, if not majority, at least 40% of these accounts are with women. And around 58 to 60 crore accounts have been opened in the country. So once you have the banking system in place, you have linked women beneficiaries through Aadhaar to these bank accounts. So all the benefits of government schemes, if a woman is being given Mudra loan, that's going into her bank account. There are several schemes of the government running on the health side. For instance, you know, there is Surakshit Matritva Yojana is there. Then there's Sukanya Smriddhi Yojana, which are basically meant to help, you know, improve the sex ratio in the country. So you're basically encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the Jam Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, you know, pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers. And then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else, that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system. And you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yeah, so.
1: Sushma ji, Aditi ji ne life cycle targeted schemes ki baat kari. Aur jo daughters hain, unke education, unke birth se hi unke liye आगे की उनकी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना. अगर हम पीएम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें जिसका जिक्र अदिति कर रही थी, तो उसमें जिस तरह का विकास हुआ है, अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 4.2 लाख अकाउंट्स थे और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीज हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
2: बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी, ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट और वॉज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज ए ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग men in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they're outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security, राष्ट्रीय और सुरक्षा नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी।
1: बिल्कुल,
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहाँ से आरंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुँच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर विमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ, फिर मातृवंदना योजना जो पीएम मातृवंदना योजना है मोर देन 20,000 करोड़, विमेन वर एक्सेस्ट, और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, बट बी मदर्स आर देयर
1: for the universal immunization program. Also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
2: Yes.
1: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek
2: yes.
1: aur jo aapne baat kari matritva support di ja rahi
2: hai
1: ji, so maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain, aur institutional deliveries 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है जी,
2: 98
1: बिल्कुल 98%। तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
2: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
1: जी,
2: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
1: जी जी,
2: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी, फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%, सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से, सो ODF फ्री इंडिया। देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टेलिटी एज यू सेड which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
1: Yes.
2: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together,
1: yes.
2: which will surely lead to healthier generations in coming times.
1: And also when
2: yes.
1: women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know,
2: yeah,
1: due to the
2: yeah.
1: Jal Jeevan mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
2: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future.
1: Mm-hmm.
2: You can see the women have dreams about their children now,
1: mm-hmm.
2: and especially the daughters.
1: Mm-hmm.
2: I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up.
1: Yes.
2: And Modi ji jo baar baar kehte hain, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र के जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है। दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत, एज वी से आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है।
1: एब्सोल्युटली आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव्स वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं। जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ, ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया। निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज

0: समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए। मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर
1: जी
0: चीज सरकार नहीं कर सकती। हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का। जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए। सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है। समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में
1: जी
0: समाज का रोल आ
1: जी
0: जाता है।
1: बिल्कुल ही, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हैं। लेकिन इन सबका भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आएं और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है, तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है, बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है।
1: जी
0: अब
1: जी
0: अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड
1: बिल्कुल
0: होगी और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
1: जी
0: महिलाओं के
1: बिल्कुल
0: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक वुमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है विच इज इजीएस्ट फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देयर कांट बी बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो, लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू ऑल्सो नीड लेटर स्किल्स, बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग and the market needs different kinds of skills. At times they may be digital skills in coming time. And you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together. And then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also, I would say, or fields, then they are ready for the world. और ये सरकार चाहती है women led development कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी। और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार हो।
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
2: बिल्कुल, आई विल से दैट एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। I can say women administrators, women representatives, first timer maybe, administration mein to first timer sabhi hote hain, so it really doesn't matter, they learn, and I've met administrators who say that we questioned our office when they say this can't be done, to humne unse pucha kyun nahi ho sakta hai, why are we here, to likhe kanun hi sirf chalenge ya नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे। और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा। और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
0: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं
1: जी।
0: या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ, आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया, तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: So as India moves towards the goal of Viksit Bharat by 2047, the role of women is increasingly becoming central to this journey. Across sectors, women are contributing as workers, entrepreneurs, farmers, innovators and leaders. Sushma ji, Aditi ji, thank you so much for this insightful and inspiring discussion.
2: Thank you.
3: In this special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Dashak. इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:45 हुए हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति 2026 को दी मंजूरी। अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति मामलों पर पुनर्विचार पर भी लगाई मुहर। हिमकेयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज बीमा मॉडल के अंतर्गत संचालित करेगी सरकार। नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को 15 जून को जिला स्तर पर दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री धर्मशाला में दिलाएंगे शपथ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री बौखलाहट में जनादेश का लगातार कर रहे हैं अपना अपमान। और सांसद अनुराग ठाकुर ने अंब अंदौरा से कोलकाता के लिए साप्ताहिक गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग कारणों से अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति के मामले पर पुनर्विचार के मामले को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक में सरकारी भूमि पर कुछ अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि ये नीति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है और इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है।
5: हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी भूमि पे या फॉरेस्ट भूमि पे जिनके अवैध कब्जे थे, वो पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज बना करके कैबिनेट में आई। उसमें ये है कि जिनके पास 20 बीघे से कम इंक्रोचमेंट सरकारी लैंड है या रेवेन्यू की लैंड है चाहे फॉरेस्ट लैंड है, उनके लिए पॉलिसी बना करके हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल बना के भेजा है।
4: हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हिमकेयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बीमा मॉडल के तहत संचालित करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार पात्र लाभार्थियों को अब 5 लाख के स्थान पर 7 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
5: कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब हिमाचल सरकार जो है इंश्योरेंस वाली जो न्यू स्कीम्स है, इंश्योरेंस के माध्यम से न्यू स्कीम्स जो है वो लॉन्च करने जा रही है और इसकी मोडेलिटीज के लिए भी जो है डिपार्टमेंट को जो है इंस्ट्रक्शंस आज कैबिनेट में जो है दी है। हाँ, मतलब हिमकेयर कंटिन्यू रहेगा, हिमकेयर और आयुष्मान कंटिन्यू रहेगा और जो इलाज होगा वो इंश्योरेंस के माध्यम से होगा।
4: संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को 15 जून को जिला स्तर पर शपथ दिलाई जाएगी।
5: आज कैबिनेट ने ये भी फैसला लिया है कि जो पंचायत के प्रधान और उप प्रधान की ओथ जिला स्तर पर दिलाई जाएगी और 15 जून को दिलाई जाएगी और मुख्यमंत्री जी कांगड़ा जिले में धर्मशाला में वे ओथ दिलाएंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिनिस्टर्स को डिप्यूट किया गया है ओथ दिलाने।
4: मंत्रिमंडल की बैठक में तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति को मंजूरी देने के अलावा जॉब ट्रेनीज को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के सैकड़ों पद भरने को भी स्वीकृति दी गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हार की बौखलाहट में हैं, इसलिए जनादेश का लगातार अपमान कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, ये बात मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में परिजनों की उपस्थिति एक सम्मान का भाव है, लेकिन आज सरकार द्वारा ऐसे समारोह में परिजनों और मीडिया को जाने से रोकना भी बौखलाहट का एक उदाहरण है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को अनुशासन और संवाद का संदेश दिया है। आज शिमला में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष नीरज भारती द्वारा अपनी ही सरकार पर लगाए गए आरोपों और पद से इस्तीफे को लेकर उपजे विवाद पर ये बात कही। चंद्र कुमार ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन बिना तथ्यों व पर्याप्त विचार विमर्श के लगाए गए आरोप संगठन व सरकार दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं।
6: जो कल स्टेटमेंट नीरज भारती ने दी है उस स्टेटमेंट से ठीक मैसेज जो है वो नहीं है, क्योंकि राजनीति में कोई छोटा काम नहीं हुआ वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार के एलिगेशन लगाना हमारी पार्टी की जो सरकार है उसके ऊपर अटैक की बात, हम इसको डिसअप्रूव करते हैं। तो मैं उसको भी ये राय दूंगा कि इस प्रकार के एलिगेशन और बगैर तथ्य को बिना सोचे समझे कोई बात करना ये पार्टी संगठन और पार्टी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है। जो कुछ उसका बयान इस चीज के ऊपर है उसका मैं खंडन करता हूँ।
4: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज ऊना जिले के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए साप्ताहिक गुरुमुखी सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ी करीब 1900 किलोमीटर की दूरी 31 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। अनुराग ठाकुर ने इस रेल सेवा को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये रेल सेवा पटना साहिब और वाराणसी जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
7: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने अंब इंदौरा से कलकत्ता को जोड़ने का काम किया। ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुरुमुखी एक्सप्रेस जो लगभग 1900 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी और मात्र 31 से 32 घंटे के अंदर ये हिमाचल प्रदेश को कलकत्ता से जोड़ने का काम, एक के बाद भी नई ट्रेन और हिमाचल को देश के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
4: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत 100 युवा प्रतिभागियों के दल को इन दिनों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों के सीमावर्ती गांवों का दौरा करवाया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे इन प्रतिभागियों को 3 से 5 जून तक किन्नौर जिला के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय समुदायों के जीवन को नजदीक से समझने का अवसर मिला। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
8: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत आज 100 युवा प्रतिभागियों को किन्नौर और लाहौल स्पीति के सीमावर्ती गांव के लिए रवाना किया गया। ITBP बेस कैंप रेखांगपियो में 3 दिवसीय अनुकूलन एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को 5 बसों के माध्यम से 20 सीमावर्ती गांव में भेजा गया। बसों को उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, ITBP कमांडेंट सुनील कुमार तथा सहायक आयुक्त विपिन ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए युवा आगामी 7 दिनों तक सीमावर्ती गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, आजीविका और सामाजिक जीवन को नजदीक से जानेंगे। इस दौरान वे स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जन जागरूकता अभियानों और सामुदायिक सेवा गतिविधियों की जवान तैनात किए गए हैं। आकाशवाणी के लिए मैं किन्नौर से सुमेश नेगी।
4: नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत के प्रधान प्रशांत के लाहौल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस पंचायत को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
9: लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्तर विकास राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आज पंचायत के प्रधान प्रशांत के लाहौल पहुंचने पर अटल टनल के उत्तरी द्वार पर ग्रामीणों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें पारंपरिक कथक पहनाकर सम्मानित किया गया। पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की खुशी में ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर रखते हुए जश्न मनाया। इसके बाद शांशा गांव पहुंचने पर सभी ग्रामीणों ने पुनः लाहौली परंपरा के अनुसार स्वागत किया। शांशा पंचायत की सफलता ने लाहौल स्पीति और हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
4: प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शिमला के बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसमें सभी वार्डो के सदस्य शामिल रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति 2026 को दी मंजूरी। अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति मामलों पर पुनर्विचार पर भी लगाई मुहर। हिमकेयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज बीमा मॉडल के अंतर्गत संचालित करेगी सरकार। नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को 15 जून को जिला स्तर पर दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री धर्मशाला में दिलाएंगे शपथ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री बौखलाहट में जनादेश का लगातार कर रहे हैं अपमान। और सांसद अनुराग ठाकुर ने अंब अंदौरा से कोलकाता के लिए साप्ताहिक गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
10: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।
11: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
12: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
13: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
14: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
13: नियम और शर्तें लागू।
11: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
12: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
13: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शिमला केंद्र। 8 बजे हैं, डीजे पेश है धारा रे गीत, कलाकार हैं राज प्रभाकर।
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं और ये समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गुलाम अली की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गजल।

मसला ये नहीं कि वो मेरी परवाह क्यों नहीं करता, मसला ये नहीं कि वो मेरी परवाह क्यों नहीं करता, मुद्दा ये है कि मुझे उससे इतनी उम्मीद क्यों है।

0: विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। गुरदास मान की आवाज में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये पंजाबी।
1: शहद गुड़े तो मिठी आई जवानी

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये पंजाबी गीता भी आप सुन रहे थे। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली।

नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में गाए इस कलाम के साथ ही आज का विविध संगीत का ये कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, 8:30 हुए हैं, आइए सुन।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गाँव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under-18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmoline, soybean oil, sunflower, mustard, groundnut, sesame and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will also benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnav has said resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Shubhendu Adhikari at Navarno in Kolkata, Mr. Vaishnav said 14,205 crore rupees has been allocated to West Bengal in the railway budget for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
2: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
6: In Madhya Pradesh, both the BJP candidates, Party National General Secretary Tarun Chugh and Rajneesh Agarwal, filed their nominations for the Rajya Sabha elections today. The nomination papers were submitted before the returning officer at the Bhopal Assembly, senior party leaders, Chief Minister Dr. Mohan Yadav, BJP State President Hemant Khandelwal and Minister Kailash Vijayvargiya were among those present on the occasion. The Congress has fielded former Mandsaur MP Meenakshi Natarajan as its candidate. The last date for filing of nominations for 3 Rajya Sabha seats from Madhya Pradesh is the 8th of June. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the road mishap in Ferozpur, Punjab today, which claimed 9 lives and injured several others. In a social media post, the Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was till today. Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia today said India's youth are the biggest strength of the country and will play a leading role in realizing the vision of Viksit Bharat by 2047. Addressing the youth for Viksit Bharat, My Bharat Youth Convention in New Delhi, the minister said My Bharat was created by Prime Minister Narendra Modi as a platform for youth to share their aspirations, ideas and volunteer spirit for nation building. He added that 65% of the country's population is below the age of 30.

0: inadequate medical care. Imran Khan and Bushra Bibi are imprisoned in connection with multiple corruption cases. Speaking at a press conference, PTI leader and Khyber Pakhtunkhwa minister Shafi Jan claimed that Khan and his wife have been prevented from meeting relatives and party members. In sports news, in hockey, Indian men's team has lifted the Under-18 Asia Cup for the third time, thrashing hosts Japan 4-1 in the final in Kakamigahara today. For India, Ashish Purti starred with a hat-trick as skipper Ketan Kushwaha scored the other goal. Meanwhile, the Indian women's team clinched bronze, beating South Korea 3-0. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian men's Under-18 hockey team on winning the Asia Cup 2026. In a social media post, Mr. Modi said the team displayed exceptional skill and teamwork throughout the tournament, culminating in a memorable victory in the final. The Prime Minister also congratulated the Indian women's under-18 hockey team on securing the bronze medal at the Under-18 Asia Cup 2026. In football, India thrashed Bangladesh 3-1 to clinch a record-extending 6th SAF Women's Championship 2026 title at Margao, Goa today. Pyari Shasha, Linda Comserto and Sanfida Nongrum scored a goal each for India, while Rituparna Chakma netted the lone goal for Bangladesh. In the World Yogasan Sports Championship 2026, India's Rohan Taide won the gold medal at Ahmedabad today. He accomplished this achievement in the boys' sub-junior artistic single competition. So far, India has won a total of 7 medals, including 6 gold, in this world-class yoga competition. In chess, 19-year-old Savita Srivastava has won the 2026 Women's Asian Individual Chess Championship in Ulaanbaatar, Mongolia. With this win, she also secured qualification for the 2027 FIDE Women's World Cup. In the one-off cricket test against Afghanistan, India ended day one with a score of 368 for 3 in their first innings at Stumps in New Chandigarh. Centuries from KL Rahul and captain Shubman Gill put the hosts in a strong position. In tennis, 8-seeded Mira Andreeva of Russia won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalinska of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. It was a dominant display by the 19-year-old, defeating Szwalinska 6-3, 6-3 to secure a memorable victory. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall conditions are expected over most parts of northeast India, interior Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिमदर्शन रिले किया जाएगा।
2: नौ बजकर 15 मिनट हुए हैं। लीजिए पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम हिमदर्शन।
3: श्रोताओं नमस्कार। साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर। इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने स्वच्छ पर्यावरण व नशामुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों को नहीं बख्शेगी सरकार। पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस व भाजपा में जीत के दावों का दौर जारी। कांग्रेस ने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से किया इनकार और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा जनाधार खो चुकी है राज्य सरकार। प्रदेश भर में कांग्रेस को मिली करारी हार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त जीवन विषय पर आयोजित मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध वायु से समृद्ध राज्य है और विकास कभी भी पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त समाज ही उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।
4: विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। आज हमें ये समझना चाहिए पृथ्वी को हमने माँ माना और अगर माँ है तो हम हैं। उसके अस्तित्व के कारण से ही हम सभी यहाँ पर हैं। हमारे सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब किस प्रकार से अपनी मातृभूमि और माँ की रक्षा करें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं की रक्षा करें। दूसरा, बढ़ते हुए जो नशे बचाने के लिए बच्चों ने और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं इसके लिए सभी ऑफिसर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयास के कारण से ऐसा संभव।
3: राज्यपाल ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की प्रशंसा की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रदेश के 3 जिला न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद ये नियुक्तियां प्रभावी होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में सभी वर्गों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे उत्तर भारत को स्वच्छ जल और शुद्ध वायु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस कारण इसे लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी से पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आग्रह भी किया।
5: विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जहाँ 5 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से बहती है, उनका ख्याल रखना है, उनकी सफाई का ख्याल रखना है, जंगल उगाना है और जागरूक होना है, यही हमारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संदेश है। क्या की बात मैं आपको करना चाहूंगा, हमारी सरकार को जो नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ चंडीगढ़ है उसने जो हमारी प्लानिंग है योजना है उसको भी अप्रिशिएट किया। पहली बार चिट्टा को पंचायत स्तर पर मार्किंग की गई है, जो यहाँ ज्यादा चिट्टा वाले है या नशा करने वाले उसको रेड कैटेगरी में, येलो कैटेगरी और कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है।
3: इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
5: हमारी सरकार को जो नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ चंडीगढ़ है उसने जो हमारी प्लानिंग है योजना है उसको भी अप्रिशिएट किया। पहली बार चिट्टा को पंचायत स्तर पर मार्किंग की गई है, जो यहाँ ज्यादा चिट्टा वाले है या नशा करने वाले उसको रेड कैटेगरी में, येलो कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है।
3: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में 8 में से सिर्फ 4 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं और इन्हें विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहना गलत है। उन्होंने शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2400 पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रधान जीते हैं, लेकिन पंचायत की असली ताकत वार्ड मेंबर की होती है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान, उप प्रधान और सभी वार्ड मेंबर का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से इनकार किया।
6: पहली बात तो यह है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं ये कोई हमारे पार्टी सिंबल पे नहीं हुए, ये जो है एक ओपन जो है चुनाव थे। ये ठीक है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पे हुए, 4 के चुनाव हुए और उसमें 3 पे इनकी जो है पार्टी के लोग हैं जीते हैं, 1 में हमारे भी जीते हैं, तो ये तो जो है किस्म से ना तो सेमीफाइनल था ना क्वार्टर फाइनल था।
3: पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों से खालसा टैक्स वसूलने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इस तरह की अवैध वसूली पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत की है और इस मामले को उचित स्तर पर उठाया जा रहा है।
6: ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। ये हर प्रदेश सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि आप किस किस्म के टैक्स लगाएंगे, वो तो पंजाब सरकार को देखना। ये बिल्कुल गलत है, इस किस्म की जो है कोई भी अगर कोई काम करता है वो कानूनन बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है, हम उसका जो आलोचना करते। माननीय मुख्यमंत्री ने बात भी की है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी।
3: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार अपना जनाधार खो चुकी है और सरकार की नीतियों से लोग तंग आ गए हैं। उन्होंने कुल्लू में प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा के साथ पंचायती राज व नगर निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में शिरकत की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनावों में अपनी जीत के खोखले दावे कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि प्रदेश भर में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की बुरी तरह हार हुई है।
7: बहुत बड़ा संदेश है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को कि आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, और खास तौर से मुख्यमंत्री जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के, क्योंकि जन विरोधी नीतियां पूरे हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जो जनता के ऊपर थोपी गई, जो फैसले लिए गए, जिनके कारण हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ जो है वो रोष है, आक्रोश है लोगों के बीच में, वो जाहिर हुआ इन चुनावों में। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी, उस मजबूत आधार जो है इस चुनाव के परिणाम के साथ रखा गया।
3: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोकभवन शिमला से जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 15 जून तक प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक डिजिटल पोर्टल पर स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। राज्यपाल ने इस अवसर पर स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वगणना प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेशवासियों को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियों, विकास का कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। राज्यपाल ने कहा कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया।
8: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है, इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। हिमाचल प्रदेश हमारे देश का एक सुंदर पहाड़ी राज्य है जो कि इस प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण मदद करेगी। जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। इस बार स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रदेशवासी जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लें।
3: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शिमला में जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में भाग लिया और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के लोगों से जनगणना के दौरान सही जानकारी देने का आग्रह किया है।
9: जनगणना की शुरुआत हुई है, इसमें कल इन्होंने गवर्नर साहब की थी, आज मुख्यमंत्री आवास के घर की जनगणना की है। इसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगा जिसमें हमारी जनसंख्या के अनुसार जनगणना की जाएगी। सारी इन्यूमरेशन जो है अभी हाउस वाइज हो रही है, तो इस मौके पर मैं सबको चाहूंगा कि जिसका अपना घर है वो अपने घर को सेल्फ इन्यूमरेशन भी करवा सकता है। जो इन्यूमरेटर है उसके घर पर भी आएंगे, उसको सही जानकारी देनी चाहिए। गाड़ी की जानकारी है, पक्का मकान है, पक्के मकान में क्या सुविधाएं, सब सुविधाओं की जानकारी हिमाचल प्रदेश की जनता इन्यूमरेटरों को जरूर दे।
3: राज्य सरकार प्रदेश में आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के पद घटाने के बाद अब पुलिस के आला अधिकारियों के पद कम करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कहा कि राज्य में एक ही काम होने पर भी अलग अलग पद बनाए गए हैं जिनकी जरूरत कम है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उच्च अधिकारियों के पद कम किए जाएं और निचले स्तर पर कर्मियों की भर्ती बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और सभी फैसले मिल बैठकर ही लिए जाएंगे।
10: उच्च अधिकारियों की जो पद है ना उसको हम कम करने की सोच रहे हैं। इतने सारे डीजीपी है, इतने सारे एडीजीपी है, काम विकिए तो थोड़ा सा निचले स्तर पर उसको जरूर कम किया जाए। तो मैंने बात की थी, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी बने डीजीपी साहब से भी बात की है, इन पदों को भी कम किया जाए। जबकि हमने फॉरेस्ट के आईएफएस ऑफिसर के 117 में से 86 पद हमने कम कर दिए हैं, आईएएस ऑफिसर के अभी 153 से 147 किए हैं। ये छोटा सा प्रदेश है, 75 लाख का प्रदेश है, बड़े पद है, बहुत ज्यादा पोस्टें हम क्रिएट कर देते हैं। कार्या एक ही है, पुलिस में तो ठीक है लेकिन नीचे कर्मचारियों की पहुंच कम हो, तो निचले स्तर पर हम ज्यादा भर्ती करेंगे और वो सब बैठ के आपसी मेलजोल से ही होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी।
11: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
3: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 48 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल पुडुचेरी के लिए रवाना हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति सत प्रकाश बंसल ने विद्यार्थियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक समन्वय को मजबूत बनाना है। सत प्रकाश बंसल ने बताया कि ये कार्यक्रम केवल शैक्षणिक भ्रमण नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
12: उद्देश्य हमारा यही है कि जो पत्रकारिता, जो संवाद नारद जी ने अपने समय में किया, आज के पत्रकार भी उसी लाइन पर चलें और सच्ची पत्रकारिता को जो है अपनाएं।
3: इसी के साथ हिमदर्शन का यंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।

0: साप्ताहिक कार्यक्रम हिमदर्शन अभी आपने सुना। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 9:30 होने को हैं। कुल्लू और कलपरी के केंद्रों से हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण बंद होता है। आकाशवाणी शिमला से मीडियम वेव पर प्रसारण जारी है। हमारे कार्यक्रम डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:30 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम साहित्य भारती रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था।

0: लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नामांकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थीं। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबाने हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक ज़माना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी की लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहाँ मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं, मुझे लिखने की और चीज़ों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए, इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ। ये बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुल्टू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत यन था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो, मैंने कहा लिखने के, उसने कहा यार तुम लिखते, हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं

0: के बारे में लिखा लिया, तो बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी उन्होंने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं भेज देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद पूछते। तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करता हूँ। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उत्साह प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती हैं। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीज़ों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को किसी को लेकर लिखना चाहते हैं तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग से उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों इसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देना, है ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखती है, औरों को भी समझने की कोशिश करती है। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका हो यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीज़ों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविज़न, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है, उन्होंने ले ली है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर, मेरा मतलब जो एक्टर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज़्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वही महत्व तो यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर, सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
3: जी।
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है, उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था
3: जी,
4: उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था, किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
3: जी।
4: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
3: जी।
4: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया
3: जी।
4: है और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
3: जी।
4: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
3: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
4: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही
3: जी।
4: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
3: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
4: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, सुभद्रा कुमारी चौहान हूं
3: जी,
4: हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया
3: जी,
4: और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया
3: जी,
4: तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
3: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
4: जी।
3: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
4: चाहे वो कृषि जगत में नंदाजी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया, उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जैसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीज़ें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूँ, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊँ। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूँगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुर्डे जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुर्डे।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉ विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाय हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: ऋषिकेश गांगुर्डे आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार हैं। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं।
1: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडिली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा। द विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू 3 ताल। दिस विल बी फॉलोड बाय द्रुत कॉम्पोजिशन इन 3 ताल।

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: That was राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुड़े जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं।

0: और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, 2 principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by